0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: Subharti Cancer Hospital. यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि आपको पता ही है, यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। वो कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा भी उन्होंने ही दिया।

ये किताब हमको सिखाती है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने खूब सुना होगा सिविक सेंस के बारे में, यानी एक नागरिक का आचरण, एक चरित्र कैसा हो, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए। यह किताब हमको सिखाती है कि देश का निर्माण केवल मानचित्र की वक्रीय रेखाओं से नहीं होता, उसका एक चेतना लोक भी होता है जो नागरिकों, व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय होता है। इस चेतना लोक में उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और गौरवशाली प्रसंग और इतिहास सम्मिलित होता है। भारत की मूल संस्कृति सदैव सनातन रही है। ये सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज भारत में संपूर्ण विश्व के सभी मतों को मानने वाले लोग पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह संस्कृति सर्वग्राह्य संस्कृति है जो मानव और मानव के मध्य की भेदक रेखा को समाप्त करती है। जहाँ जहाँ इस संस्कृति का नुकसान हुआ है, वहाँ वहाँ सामाजिक स्थिति बद से बदतर हुई है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान इसके उदाहरण रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश सजीव उदाहरण है। यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं एवं विकास करना चाहते हैं तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा पारलौकिक मान्यताओं के मकर जाल में उलझी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन वे भाव हैं जो सृष्टि की रचना के साथ आए एवं जब सृष्टि रहेगी तब तक उन्हीं भावों के आधार पर रहेगी। वे भाव है प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें उपयुक्त

से सभी भाव हों। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सभी कहे जाने वाले कथित धर्म तो केवल संप्रदाय या मत ही हो सकते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक है। गणतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सूचना संचार प्रणाली, जिसे हम सुविधा के लिए सम्मिलित रूप से मीडिया भी कह देते हैं। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली वर्तमान में परिष्करण अथवा आमूलचूल सुधार चाहती है। दूसरी ओर वर्तमान में आम जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के दलदल में फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। देश के विषय में सोचने का इनके पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। चीन में वर्तमान सत्ता हमारी कथित स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई। आज चीन एक विश्व की शक्ति बन चुका है और हम अपनी पहचान एवं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी देश प्रेमियों को इससे चिंतित होना चाहिए और इस समस्या के समाधान की खोज करनी चाहिए। अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी समस्याओं का मूल कारण ये है कि हमें अपने देश का ना तो सही इतिहास बताया गया और ना ही इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हम ये समझें कि हमारी सोच सबसे पहले देश के प्रति होनी चाहिए, बाकी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र तो बाद में आते हैं। हमारा मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं राष्ट्र चेतना कार्यक्रम, जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर। इसी पुस्तक से जो अंश मैंने अभी आपको सुनाया, जो मैं समझता हूँ इस पुस्तक से कि सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने देश के बारे में सर्वप्रथम हमको सोचना चाहिए। पुस्तक के लेखक हमको ये समझाना चाहते हैं कि देश सबसे पहले होता है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो भी कार्य करते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति सोचना होगा। चाहे आप ठेला लगाते हो, आप मजदूर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप छोटे से छोटा कोई कार्य या बड़े से बड़े कोई धुरंधर कार्य भी करते हो, तब भी सर्वप्रथम आपका ये कर्तव्य, आपका ये धर्म बनता है कि सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ये प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि अपने देश के भावी कर्मचारियों को अपने देश का सही इतिहास बताया जाए, उन मूलभूत विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र के लिए आवश्यक हैं। बस यही एक उपाय है। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के विषय में सोचें, उनमें राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो, कि देश को ऐसी युवा पीढ़ी मिले जो राष्ट्रीय भाव को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए देश के नव निर्माण में सहयोगी हो। किसी भी समाज का निर्माण चरित्रवान नागरिकों से होता है। चरित्र की परिभाषा बहुत ही व्यापक है, उसमें नैतिकता के साथ राष्ट्रबोध एवं राष्ट्र शोध भी सम्मिलित होते हैं। इसी भाव से इस कार्यक्रम को भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम का आधार है राष्ट्र अनुभूति। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो की इस खास पहल में आप भी जुड़िए और आपके विचार शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय एवं सुभारती ग्रुप के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। डॉक्टर अतुल कृष्ण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, संभवतः यह किसी एक व्यक्ति का नाम हो भी नहीं सकता। डॉक्टर अतुल सरीखे किसी व्यक्तित्व का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक, विस्तृत, भव्य और विशाल हो, उसे किसी परिभाषा के दायरे में रखकर परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी मूल रूप से शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र परिचय नहीं। वे जितने प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक रहे हैं, उतने ही कर्मशील एवं ध्येयनिष्ठ सामाजिक शल्य चिकित्सक भी हैं। सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए वे वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रकल्पों का नेतृत्व भी करते हैं, साथ ही उसमें अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सहभागिता भी करते हैं। जैसा कि उनके चिंतन और व्यवहार से लगता है कि वे एक स्वस्थ सामाजिक संरचना के पक्षधर हैं, इस दिशा में उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष उनका राष्ट्र चिंतन है, भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति परम आस्था और राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव उनके स्वाभाविक कर्म का आधार है। उनकी राष्ट्र शोध से राष्ट्र बोध की वैचारिक यात्रा उनको समाज और राष्ट्र में विशिष्ट बनाती है। उनकी लिखी इस अलौकिक पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर आधारित राष्ट्र चेतना कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं।
1: जय हिंद वासुदेव कृष्ण। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पर आजाद हिंद रेडियो के बहुत ही सुंदर से स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया है।

0: तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करते हैं ना कई बार, तो ज्ञान की बातें कई इतनी इतनी ज्यादा रूखी होती हैं कि लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण नहीं करते। तो कई बार जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हम जानते इस बात को, कभी कभी ऐसी दवा पिलाई जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं
1: जी,
0: नादान बच्चे होते हैं
1: जी,
0: उनको जब दवा पिलाई जाती है तो कई बार हम उसमें शहद मिला देते हैं
1: जी,
0: तो शहद मिला के पिलाते हैं तो दवा भी ग्रहण हो जाती है और बच्चे को आनंद भी आता है
1: जी।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं।
1: जैसे कि आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको कि हमारे सुभारती के दृष्टिकोण से हम उनको एक महापुरुष के साथ साथ युग पुरुष कहते हैं
0: जी।
1: और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत को वो सब दिया जो कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता कि एक आदमी इतना सब कुछ क्या किसी देश को दे सकता है
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी देख के और जान के कि दुख होता है कि जो बाबा साहब को बहुत अच्छा मानते हैं या कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उन बाबा की सच्चाई नहीं जानते
0: जी।
1: तो बाबा को केवल दो दृष्टिकोण से पहचाना जाता है हमारे देश के अंदर, एक तो संविधान निर्माता और दूसरा कि दलित उद्धारक
0: जी।
1: लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब का हम जो पूरा कृतित्व देखते हैं
0: जी,
1: तो हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाबा से अछूता रहा है, जिसमें बाबा का योगदान नहीं है
0: जी।
1: जैसे आप महिलाओं को ले लीजिए, महिलाओं को समानता दिलाने का, उनका न्यायिक हक दिलाने का
0: जी,
1: हर दृष्टिकोण से, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे समाज में कोई और अधिकार है, तो उनको समान रूप से समाज में ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया
0: जी।
1: और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो प्रसूति अवकाश है ना
0: जी,
1: ये भी बाबा साहब की ही देन है। ये बाबा साहब ने, जब ये वायसराय के एक परामर्शदाता थे
0: जी
1: अंग्रेजों के टाइम में, तब उन्होंने उनके कहने पर वायसराय ने प्रसूति अवकाश की घोषणा की थी। तो ये कंट्रीब्यूशन लोग नहीं जानते। इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है
0: जी,
1: श्रमिक वर्ग को पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, ये जितना मालिक का मन होता था वो उतना उससे काम कराता था, और जो चाहता था वो उसको वेतन देता था
0: जी,
1: और उसको बोलने का अधिकार नहीं था
0: जी।
1: तो श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने कि 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी उनसे नहीं ली जा सकती उनकी मर्जी के विरुद्ध
0: जी सर।
1: और ऐसे ही प्रति सप्ताह उनको एक अवकाश दिया जाना जरूरी है
0: जी,
1: ये बाबा साहब की देन है। इसके अतिरिक्त उनको इस बात का अधिकार उन्होंने दिया कि आप संगठित होकर यूनियन बनाकर अपनी आवाज को उठा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये श्रमिकों के लिए उनका योगदान था। अब आप इसके अलावा देखिए कि जो हमारे जल प्रबंधन नीति
0: जी,
1: उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ये देखा गया ना कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कहीं तो सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, और कहीं बाढ़ आ रही है
0: जी,
1: तो विभिन्न नदियों को जोड़कर और जहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। तो इस तरह के अटल जी

0: इसका क्रेडिट दिया जाता है। बिल्कुल अटल जी ने योजना बनाई थी वो कार्यरू अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उस पर काम चल रहा है। तो वर्तमान सरकारों का जितना योगदान है, तो आप बाबा साहब का देखिए, उस समय बाबा साहब ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था और कैसे एक नदी जो जारी है विभिन्न प्रदेशों से निकलकर, तो उनमें कैसे पानी का बंटवारा हो, तो ये जल प्रबंधन का उन्होंने पूरा दिया। फिर एक और चीज जो बाबा साहब के बारे में लोगों को नहीं पता कि खेती है मजदूरों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उनका विचार था कि हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग हो। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कि अभी तक क्या है ना कि आप जो गांव के में जाके देखें, उस अब कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत था कि सारी जो जमीनें होती थी वो बड़े बड़े जमींदारों के पास होती थी। आज भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। सब जमींदारी जो चलती थी उसमें जितना भी श्रमिक था वो उसमें काम करता था, तो श्रमिक उसका उसको लाभ कुछ नहीं मिलता था, जो उसको मेहनताना मिल गया तो मिल गया,
1: बस मजदूरी जो मिल गई वो मिल गई,
0: मजदूरी जो मिल गई मिल
1: गई।
0: तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई सारे देश के अंदर जो खेती है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, और उसमें जो मजदूर है उसको मजदूरी के अलावा जो वहां से लाभ होता है उसका भी एक भाग मिलना चाहिए। तो बाबा साहब कोऑपरेटिव फार्मिंग के बहुत बड़े उनका चाहते थे, वो नहीं हो पाया लोगों ने, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का संदेश दिया। तो उससे दूसरा लाभ क्या होता है कि देखिए अभी हम जब छोटे छोटे खेत होते हैं तो हम उसमें अच्छी फसल नहीं उगा सकते, अब बड़े बड़े उपकरण हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो जो छोटा खेत है वो बहुत बड़ा खेत हो जाएगा और उसके अंदर जितनी मशीनरी है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अधिक फसल उपजा सकते हैं और श्रमिकों को सम्मान और उसमें से उनका उसका भागीदारी भी मिले। तो ये बाबा साहब का श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
1: सर आम जनमानस को ये सारे योगदान के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है आज भी, सर।
0: नहीं है। औद्योगिकीकरण आप देखिए, जहाँ एक ओर हम ये विरोधाभास देखते हैं, जहाँ एक ओर हमारे गांधी जी ये थे कि भाई कुटीर उद्योग ही होने चाहिए और हथकरघा और खादी के ऊपर जोर था उनका, बाबा साहब ने कहा कि देखिए क्या है कि हमारे यहाँ से जो कच्चा माल बाहर ले जाते हैं अंग्रेज लोग, वो हम पे गुलाम कैसे बने, हम हमारी जो आर्थिक शोषण हुआ वो उसका आप जड़ में जाइए, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ से देश में से कच्चा माल ये अंग्रेज ले जाते थे और उसी कच्चे माल को अपने उद्योगों में उसका अंतिम उसका प्रोडक्ट बनाकर वो बहुत ही महंगे दामों पर हमी भारतीयों को बेचते थे। तो बाबा साहब इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, क्योंकि उसके बिना उन्होंने कहा देश प्रगति नहीं करेगा। ये बात आप देखिए। फिर जब हम बाबा साहब के उसके बारे में देखते हैं तो कितना बड़ा योगदान, आज हम देश हमारा एक है
1: जी।
0: क्यों एक है? क्योंकि यहाँ पर सनातन अभी भी मजबूत है
1: जी।
0: जिस दिन सनातन टूट जाएगा उस दिन ही देश टूट जाएगा। तो बाबा साहब का एक सनातन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और जब बाबा साहब ने 1935 में घोषणा कर दी थी कि भाई मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं
1: जी।
0: अगर उनका सनातन के प्रति, जो मैं कहता हूँ ना सनातन, हिंदू केवल सनातन अपने आप को सनातन का ऐसा नहीं है, हिंदू तो सनातनी है ही, लेकिन जितने भी भारतीय मत हैं जैन सिख बौद्ध ये सब सनातनी है
1: जी सर।
0: इसमें पूजा पद्धति किसी की कुछ हो सकती है, मान्यता कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब सनातनी है
1: जी।
0: तो बाबा साहब अगर सनातन से विमुख होते तो उनको कौन रोक रहा था? 1935 में वो धर्म बदल सकते थे
1: जी।
0: और जब ये घोषणा उन्होंने कर दी तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके पास ऑफर आए
1: जी।
0: क्रिश्चियंस ने कहा कि भाई हम आपको पूरा का पूरा एक आइलैंड देने को तैयार हैं और आप ईसाई बन जाइए। उधर से हैदराबाद निजाम ने तो चेक बुक लेके चेक उनका, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, दुनिया का उस सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निजाम था।
1: अच्छा।
0: उसने चेक ब्लैंक चेक उसने लिख दिया और एक नंबर लिख के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि आप जितने जीरो लगा सकते हो उतने जीरो लगा लो।
1: अच्छा।
0: और आप मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन मैं सनातन छोड़ दूंगा उस दिन ये देश टूट जाएगा। और सही बात भी थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे देश से हमारे समाज से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, पर अंत में जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कोई विशेष प्रभाव पड़ नहीं रहा है तो 1956 में उन्होंने अपनी मृत्यु से केवल लगभग 1.5 माह पहले उन्होंने सनातनी बौद्ध मत स्वीकार किया और लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध मत स्वीकार किया। तो कितनी बड़ी धर्म रक्षा हुई, सनातन की धर्म की रक्षा हुई बाबा साहब के द्वारा, ये हमें समझना चाहिए
1: जी सर।
0: फिर आप आज जो हमारा रिजर्व बैंक है
1: जी,
0: रिजर्व बैंक को आप जानते हैं कि ये इसकी जो कॉन्सेप्ट था रिजर्व बैंक का, ये आया कहाँ से? ये बाबा साहब ने जब शोध अपना किया, पीएचडी करी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, उससे इनके शोध पत्र था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये बाबा साहब का शोध पत्र था, इसके आधार पे रिजर्व बैंक की संरचना हुई, स्थापित हुआ वो
1: जी।
0: हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इनके प्रति विमुख ना, तो उनके ये सारे जो योगदान जब लोगों को पता चल रहे हैं, तो जिसको भी पता चल रहा है वो, कई लोग तो मेरे पास आए
1: जी
0: कि आपने तो हमारी अवधारणा बिल्कुल ही पूरी तरह बाबा साहब के बारे में परिवर्तित कर दी। हम तो केवल ये सोचते थे कि बाबा साहब गांधी जी के विरोधी थे और वो देश के भी बहुत ज्यादा जो आजादी के रूप में उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हम गलत थे
1: जी।
0: तो ये जो लोगों की बाबा साहब के बारे में अवधारणा थी वो हमने काफी चेंज करी है। अब जितने भी लोग आए उन्होंने देखा
1: जी।
0: एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते कि जब देश का बंटवारा हुआ, तो देश के बंटवारे के समय केवल बाबा साहब एक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से धर्म के आधार पर देश के विभाजन का विरोध किया।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा ये धर्म के आधार पर कैसा विभाजन होगा कि जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो तो भारत में ही रह जाएंगे, तो जो ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये तो बात ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो जा रहे हैं आप ठीक है राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन्ना साहब हल्ला मचा रहे हैं आप उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह के भारत का डिवीजन कर रहे हैं कि साहब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: तो इस आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके बड़े प्रबल रूप से वो विरोधी थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये बात सच मान भी ली जाए, जो कि है नहीं सकते, कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उसको मैं भी बिलीव करता हूँ, बाबा साहब भी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग हैं, ये एक शरीर है तो एक आत्मा है, और अगर शरीर में से आप आत्मा निकाल दीजिए तो क्या होगा, शरीर किसी काम का है
1: नहीं सर,
0: और अगर आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा भटकती रहती है
1: जी,
0: है ना, उसको तो भूत कहते हैं
1: जी सर, जी सर।
0: तो आप भूत बन के रह जाएंगे
1: जी।
0: तो जो विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे शरीर में शरीर भौतिक शरीर और आत्मा दोनों होनी चाहिए, इसीलिए देश के विकास के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें, और यही बाबा साहब का मत था, इसीलिए बाबा साहब विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण लोगों को नहीं पता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई ठीक है अगर मैं मान लूं, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कल्पना करिए कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो जितने यहां पर मुसलमान रह जाएंगे भाई
1: जी,
0: तो वो क्या करेंगे, उनको भी चले जाना चाहिए
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो ये जो इतना मुखर होकर स्पष्ट रूप से कहने वाला अगर कोई था तो केवल बाबा साहब थे, उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है
1: जी।
0: तो देश के कितने बड़े वो विचारक थे, और आप सोचिए अगर इस उनकी इस बात को मान लिया गया होता उस समय, अगर बाबा साहब की बात मानी गई होती और देश का बंटवारा नहीं हुआ होता, तो आज हमारी जो कितनी सारी समस्याएं हैं वो हमारे नहीं होती
1: जी।
0: तो इसलिए इस मेले में हमने जहां लोगों को मनोरंजन के साधन दिए, उनको आकर्षण दिए, तो हमने बाबा के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी, उसका बड़ा लाभ हो रहा है
1: जी।
0: समाज को एकजुट करना है। दूसरा, ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है
1: जी।

0: भगवान बुद्ध के बारे में भ्रम है। भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को राहुल को और यशोधरा को सोता हुआ छोड़ कर चले गए, बिल्कुल गलत है ये।
1: अच्छा
0: हाँ, सच्चाई ये है कि उनका पहले से योजना थी, वो बाकायदा योजना के अनुसार उन्होंने निष्क्रमण किया था और वो अपना घर छोड़कर संन्यास उन्होंने लिया था। इस बात की पूरी जानकारी यशोधरा जी को थी
1: जी,
0: और उनकी सहमति थी, और जाते समय यशोधरा जी मिली थी उनको, और यशोधरा जी ने उनसे कहा था कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप केवल अपने उद्धार की बात में सोचना। आप सोचना तो पूरे समाज के लिए आप ऐसा रास्ता खोजो जिससे पूरा समाज लाभान्वित। अब कितनी ये भ्रम है लोगों में कि अब वो छोड़ के चले गए सोते में, तो ये सब भगवान बुद्ध के बारे में हमने यहाँ पर जी लोगों को जानकारी दी।

0: और बौद्ध मत के बारे में भी कि बौद्ध मत किस रूप में एक पूरी तरह से आप देखिए वैज्ञानिक धर्म है
1: जी
0: ना, जो लौकिक व्यवहार के ऊपर आधारित है। सनातन है, सनातन का अर्थ है जो सदैव सता और जो सदैव रहेगा। तो कोई भी पूजा पद्धति तो सनातन नहीं हो सकती
1: जी।
0: कोई पूजा पद्धति सदैव से नहीं थी, जो चेंज होती रहती है
1: जी।
0: पहले हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें बलि दी जाती थी, फिर मूर्ति पूजा होने लगी, फिर ध्यान किया जाने लगा। जो हमारे विभिन्न समय समय पसंद आए उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख के लोगों के दोषों को दूर करके पूजा पद्धति में परिवर्तन किए। नहीं तो सनातन का जो मूल भाव है वो है हमारा लौकिक व्यवहार
1: जी।
0: अगर हम लौकिक व्यवहार में देखें हमारे में प्रेम करुणा मैत्री समानता और समन्वय के भाव है तो वो सनातन है
1: जी।
0: और हमारे भारतीय मत तो कम से कम जितने भी हैं उस सब सनातनियों को ये भाव समन्वय, समन्वय सबसे महत्वपूर्ण इसमें समन्वय। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुस्लिम और ईसाई और यहूदी पारसी ये लोग भी समन्वय का भाव रखते हैं तो ये भी सनातनी है
1: जी।
0: समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ ये है कि मैं अपनी मान्यता में विश्वास रखता हूँ, मैं उसको मानूंगा, लेकिन मैं आपकी मान्यता का भी सम्मान करता हूँ
1: जी।
0: मैं विश्वास उसमें नहीं करता हूँ वो बात अलग है, लेकिन
1: सम्मान करता हूँ मैं,
0: है ना। ये समन्वय
1: जी
0: कि मैं आपकी बात आप अपने स्वीकार करिए, मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बात आप पे नहीं थोपूंगा, आप अपनी बात मेरे पे मत थोपिए। तो ये समन्वय है, ये हमारे सारे भारतीय मतों में
1: ये दो धारणाएं बिल्कुल टूटी हैं सर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी। क्योंकि कहीं ना कहीं आम धारणा ये है कि बुद्ध तो सोते हुए बच्चों को अपने छोड़कर चले गए थे। आपकी बात सुनकर जरूर ये जागरूकता आएगी।

0: जब मैं आपको देखता हूँ, हालांकि पहले भी जब मेरी आपसे इस बारे में बात हुई कि इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कैसे कर पाते, मैंने आपकी जीवनी का पहला हिस्सा पढ़ा, समझ में आया कि आपका पालन पोषण किस तरह से हुआ, आप जो एक व्यक्तित्व है वो किस तरह से आपने खुद की पर्सनैलिटी को भी बनाया। और करियर के शुरुआती दौर की भी बात हम करेंगे, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर रोड पर जो एक छोटा सा क्लिनिक पहले आपने बनाया, तो मेरे गांव से मैं एक ऑटो में बैठकर सफर किया करता था मेरठ आने के लिए। तो एक बार मैं ऑटो में पीछे बैठा था, दो बुजुर्ग दंपत्ति थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, तो एक की आंखों पर काले चश्मे चढ़े थे। मैं नहीं जानता था सुभारती अस्पताल के बारे में, तो वो ऑटो में बैठकर क्या बातें हो रही हैं सर, वो बुजुर्ग दंपत्ति जो बूढ़ी अम्मा थी वो कह रही है कि मेरी आंखें बनाने के लिए जा रहे हैं सुभारती। तो जो बाकी सवारियां बैठी थी वो कह हाँ हाँ सुभारती बहुत ही सस्ते में हो जाता, बहुत बढ़िया है। उनके पास पैसे नहीं थे सर, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई गरीब आदमी अगर ये सोच पाता है, कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि चलो सुभारती चलते हैं और वहां जाकर मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा या कोई और इलाज हो जाएगा, तो ये एक अमूल्य योगदान है सर आपका सुभारती अस्पताल के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास आज भी अच्छा महंगा इलाज अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं आवाम की तरफ से सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा अस्पताल दिया। अभी दो दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज भी फ्री होता है सर हमारे अस्पताल में, क्या कहेंगे सर?
1: हाँ वास्तु कृष्णा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी
0: जी सर,
1: तो मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर थे
0: जी,
1: और उन्होंने मेरे से एक वादा लिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि भाई आप पुराने, आज के जमाने की बात अपनी जगह, लेकिन पुराने हमारे समय में हम लोग जो भी काम करते थे अपने माता पिता से अनुमति लेके आशीर्वाद लेकर ही करते थे
0: जी।
1: तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दशा लगा दी थी आशीर्वाद देते समय।
0: अच्छा।
1: उन्होंने ये दशा लगाई थी कि तुम्हें मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी क्लिनिक से कभी कोई जना इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है
0: जी।
1: तो मैंने उनको ये वचन दिया था। तो मैं अपने उस वचन का मैंने पालन किया। पहले मैंने अपनी प्राइवेट निजी क्लिनिक खोली, निजी अस्पताल खोले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर मेरे से कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कम है और मेरा इलाज आप कर दीजिए, मैंने उसको मना किया। हमारे यहाँ वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज बड़े बड़े अस्पताल हो गए ऊपर वाले की कृपा से, मेरे प्रभु कृपा है। तो यहाँ आज भी वही नियम है सुभारती में कि आपके पास पैसे हो ना हो इसका कोई मतलब ही नहीं। मोतियाबिंद तो निःशुल्क होता ही है, डिलीवरी माताओं की निःशुल्क होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि भाई घर में डिलीवरी हो जाती है तो उससे बड़े नुकसान होते हैं। तो उनकी अच्छा जो घर में डिलीवरी होती है उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण गरीबी है। तो ठीक है, कुछ बड़े बड़े परिवार के घरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर बड़े घराने हैं, बड़े परिवार हैं, तो अपने घर के अंदर ही अस्पताल सही बना देते हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते कि घर की डिलीवरी है। लेकिन जो गरीब महिलाओं के डिलीवरी घर में हो जाती है क्योंकि वो डरती हैं कि अस्पताल जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सब हमारे निःशुल्क होता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं। और जो अगर हमारे यहाँ उस निःशुल्क डिलीवरी के बाद भी अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो सम्मान पूर्वक उस माँ को 1000 रुपए का नकद इनाम दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: और उस बच्ची को उसका इंश्योरेंस दिया जाता है कि वो
0: अस्पताल की तरफ से
1: कि इसको अगले 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको रेगुलरली बच्चे को दिखाते रहें, टीका लगवाते रहें।
0: अच्छा।
1: तो ये सब हम लोग करते हैं।
0: ये तो सर हमें भी नहीं पता था।
1: हाँ।
0: तो अगर कोई भी डिलीवरी यहाँ पर होती है और बेटी पैदा होती है तो अस्पताल उसको इनाम के बतौर माँ को पैसे भी देते हैं और अगले कुछ समय तक इलाज भी, 5 साल
1: तक बच्चे का, क्योंकि ये पीरियड होता है ना जिसमें बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह लगना जरूरी है। 5 साल के बाद बच्चे में रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह हो जाती है, फिर तो आवश्यकता नहीं पड़ती
0: जी।
1: लेकिन 5 साल तक उसको रेगुलर टीका लगवाना जरूरी है
0: जी।
1: वही जो गरीब आदमी है ग्रामीण क्षेत्र का है वो कई बार टीके नहीं लगवाता
0: जी।
1: दोनों ही कारण होते हैं, एक तो ये कारण होता है कि उसको अनजान है वो
0: जी,
1: और दूसरा ये भी कारण होता है उसको डर लगता है कि अस्पताल में जाएंगे तो पैसे मांगे जाएंगे
0: जी।
1: तो बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से भी सुविधाएं निःशुल्क हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वहां पर जाते वैसे ही डरते हैं। उस भारती की तरफ से हम उनको बाकायदा कहते हैं कि आप बच्चे को पूरे सब उसका टीका वगैरह लगवाइए, दिखाते रहिए कि कोई कमी हो, 5 साल तक सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क होता है।
0: क्या बात है।
1: और जो भी ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको, लेकिन कोई सा भी रोग हो
0: जी,
1: हमारी परंपरा यह है सुभारती की, जो मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल से, सुभारती अस्पताल से, चाहे वो सुभारती अस्पताल मेरठ का हो, चाहे सुभारती अस्पताल, हमारे देहरादून में भी एक अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, चक्राता रोड पे झाजरा ग्राम में
0: जी।
1: तो हमारे स्वार्थी के अस्पतालों में ये परंपरा है, ये नियम है कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो भी उसको लौटाया नहीं जाएगा, जो उसकी सामर्थ्य हो वो करे, नहीं तो बाकी हमें।
0: इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ आपका नाम अतुल है, आप अतुलनीय योगदान कर ही रहे हैं सर। तो हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को भी ये पता चल ही गया आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पर डिलीवरी होती है तब भी हर तरह से हर संभव प्रयास किया जाता है मदद करने के लिए।

0: सर अब बात करते हैं आज के समय की। आपने कामयाबी हासिल की अपने जीवन में और मेरे ख्याल से जो भी ख्वाब जो भी सपने आपके बचपन में या युवा पीढ़ी में रहे होंगे आपके सभी पूरे हो गए होंगे, तो क्या अभी कोई और सपना कोई ख्वाब आपका बचता है सर?
1: देखिए जब तक जीवन है तो सपने तो देखने ही हैं और देखने है, लेकिन ये सोते के सपने नहीं है
0: जी।
1: जो मैं सपने देखता हूँ जागते में देखता हूँ
0: जी सर।
1: तो देखिए मेरा अब मैं आपने बिल्कुल कहा कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जब मैं इसका कभी देखता हूँ इसको नजर इस पर डालता हूँ तो मुझे अब नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य घर से निकला। मेरे पिताजी शिक्षक थे, जैसा आपने पढ़ाई है उसमें
0: जी,
1: और कोई घर में संपत्ति वगैरह किसी तरह का नहीं था। क्लिनिक भी मैंने जो आरंभ में ली थी वो एक चौरसिया नर्सिंग होम में शिफ्ट करी थी कि भाई मैं उनके रोगियों को निःशुल्क देखूंगा, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चैम्बर दे दिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई किराए पे भी क्लिनिक ले सकूं। अपनी क्लिनिक होने की तो बात ही छोड़ दीजिए
0: जी,
1: पर क्लिनिक लेने के लिए किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने इस शर्त के ऊपर चौरसिया नर्सिंग होम में चैम्बर लिया था
0: जी।
1: और आज मेरे पे कोई कमी नहीं है। देखिए मेरठ में पूरा विश्वविद्यालय है, लोकप्रिय अस्पताल है, मेरी बहुत बड़ी 200 गायों की गौशाला है, एक अस्पताल किठौर में है, ऐसे बिजनौर में मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं और देहरादून में पूरा मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोच थी उससे मैंने अधिक प्रभु कृपा से मैंने स्थापित कर दिया। मैंने ये भी स्थापित कर दिया कि आदमी अगर सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, तो उसके आरंभ करने के लिए भी पैसा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसा हुए भी आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कमा सकते हैं और सामाजिक रूप से भी कमा सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने जो युवा पीढ़ी है उसको जब ये मेरी किताब पढ़ेगा, मेरी जीवनी पढ़ेगा, ये सब देखेगा, तो इस बात को उसको समझ आ जाएगा। तो वहां उस दृष्टिकोण से तो मुझे अब और आगे करने की इच्छा नहीं है। और जैसे मैं, आप जानते हैं कि मैं बौद्ध मत को मानने वाला हूँ
0: जी,
1: तो तथागत ने भी कहा है कि भाई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोई तृष्णा नहीं है कि मुझे अब और नई कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, नया मेडिकल कॉलेज बनाना है या नया अस्पताल बनाना है, ऐसी मेरी कोई तृष्णा नहीं है
0: जी।
1: ये सब काम मैंने अपने बच्चों को धीरे धीरे मैंने दे भी दिए हैं और धीरे धीरे जो रह गए वो मैं दे रहा हूँ
0: जी।
1: अब जो मेरा जो सपना है वो सपना ये है कि हमारा जो भारत है वो बौद्धमय हो
0: जी।
1: यहाँ मैं बौद्धमय हो जाने का जो है स्पष्ट कर दूं, बौद्धमय का मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो अपने अपने मतों को छोड़कर और बौद्ध मतावलंबी हो जाएं
0: जी।
1: जब हम बौद्धमय कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव प्रवाहित हो
0: जी
1: सबके मन में। आप पूजा पद्धति कुछ भी रखें लेकिन आप में एक दूसरे में समानता होनी चाहिए। आप जो जातियां हैं इनका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये जातियां रहेंगी, जब तक ये वर्ण रहेगा तब तक लोग आपस में मिल नहीं सकते। हम जो भी समानता की सद्भावना की बात करते हैं तो वो सब बेमानी है। तो एक मेरा उद्देश्य ये है कि सही रूप में भारत बौद्ध में हो और जो हमारा लौकिक व्यवहार है वो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का पंचशील का आधार लेकर वो स्थापित हो
0: जी।
1: और जो हमारे सनातन के जो परिभाषा है उसको लोग सही रूप में समझें कि जो ये लौकिक व्यवहार से संबंधित जो हमारी सोच है
0: जी,
1: जिसको वो सोच सही लगती है, जो उसको सही भी लगती है और अपने जीवन में पालन करता है, वो सनातनी है
0: जी।
1: तो ये मेरा है कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, रविदासी, रामदासी और भी जितने भी इस तरह के मत हैं, हम सब सनातनी है और सनातन हमारा एक हो
0: जी।
1: और उसका कारण क्या? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हम लोगों को इंसानियत के रूप में रहना है, साथ में ही कि अगर हमें देश को एक रखना है, देश में हमें डेमोक्रेसी को बचाना, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको जनतंत्र दिया
0: जी,
1: तो सनातन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कल को आप सोचिए कि अगर दूसरे मतों का यहाँ पर बोलबाला हो गया और उनके नियम चलने लगे तो सबसे पहले जो कुठाराघात होगा हमारे संविधान पे होगा और हमारे जनतंत्र पे होगा। एक तो मेरा सपना ये है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मेरा सपना है जो दोनों इंटरलिंक्ड हैं
0: जी,
1: ये कब होगा? ये कब तब होगा कि जब हमारे में कोई राष्ट्रीय चरित्र होगा। अभी तक तो हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। हमारा जो हम केवल जो हमारी सोच है तो अपने तक है, अपने से निकलते तो अपने परिवार, अपने परिवार से निकलते हैं तो अपनी जाति या अपने धर्म
0: जी,
1: उन तक हमारी सोच जाती है, देश तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो हमारा प्रयास ये है कि युवा वर्ग में बड़ों में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो युवा वर्ग के लिए कर रहे हैं कि युवा वर्ग हमारा समझे, जो नाइन्थ क्लास के ऊपर के बच्चे हैं विशेष रूप से, उनमें हम ये भाव उनके विद्यालयों में जा रहे हैं, वहां पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं कि पहले चरित्र समझो और उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र समझो। तो ये हम लोग राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की योजना हम लोगों ने रचना के नाम से शुरू की हुई है
0: जी।
1: तो उसमें मैं उस योजना का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ कई लोग जुड़ भी गए हैं जो रिटायर हो गए
0: जी।
1: और रिटायर होने के बाद आदमी क्या करेगा, घर पे खाली है ना
0: जी।
1: तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर घर पे खाली तो खाली क्यों है, आपने जो काम किया अपने जीवन में इतना आपने आपको एक्सपीरियंस हुआ तजुर्बा हुआ उसका लाभ समाज को दो
0: जी,
1: और बिना किसी वेतन के दो, आप तो घर पे खाली बैठे हो
0: जी,
1: तो हमारे साथ चल के किसी कॉलेज में कुछ अपने उद्बोधन दे दो, कुछ लोगों को ज्ञान दे दो
0: जी।
1: तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस आधार पर, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये दो चीजें वास्तव में कर रहा हूँ।

0: भी है। जैसा आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में आज इंडियन सिविक सेंस की बात हो रही है कि बहुत बुरा हमको बताया जाता है। ऐसा भी बोलते हैं विदेशों में कि इंडियंस आर डर्टी, हम लोगों के लिए बोला जाता है सिविक सेंस नहीं है हमारे भीतर। ये क्या कारण आपको लगता है सर?
1: देखिए, जब हम आत्मावलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हम पे ये आरोप लगाए जाते हैं ये गलत नहीं है
0: जी,
1: ये सही है। आप अभी, मैं तो कभी विदेश गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे संबंधी गए हैं विदेशों के बारे में जानकारी, जो सही जानकारी थी, कि किताबों से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विदेशों में लोग गए हैं सही रूप से उन्होंने मुझे जानकारी दी है, उसमें जो हम देखते हैं तो हम लोगों में वास्तव में सिविक सेंस नहीं है। हम अपने घर का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान है
0: जी,
1: उसमें हम सब ये चीजें भी सिखा रहे हैं कि भाई आप, ये देश आपका है, आप समझो। सिविक सेंस में जितनी भी चीजें आती हैं, आप चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे आप, अब आप ये देखिए कि कहीं भी हमारे में, हम कहते तो हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं
0: जी,
1: सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं कि भाई हम सबकी सोच रखते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है किसी चीज के लिए, तो सबसे पहले तो हम आगे घुसने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये जो भाव है ना, केवल अपने आत्म केंद्रित जो लोगों के भाव है, उसी को परिवर्तन करने की जरूरत है
0: जी।
1: और ये हम इसके जो रचना स्कीम है, इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल हमारे प्रयास करने से नहीं होगा, ये हमारे पूरे जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज घर से शुरू होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि स्कूलों में जो हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं खास तौर से
0: जी,
1: उनमें अधिकांश में ये भाव बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो एक घटना आपको बताऊंगा कि हम लोग कार में जा रहे थे
0: जी,
1: उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, तो एक मेरी छोटी बच्ची थी, उसने टॉफी, उसकी आयु होगी लगभग 9 वर्ष के करीब की, तो उसने टॉफी हम सब लोगों ने ली, क्लास मैंने दी सबको टॉफी, तो उसने जैसे मैंने रैपर खोल के लिए, तो उसने मेरे से कहा कि ये पापा ये रैपर मुझे दे दीजिए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों मांग रही है, खैर हमने दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा, सबके ले लिया उसने, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि आप अभी खिड़की खोलोगे फेंक दोगे बाहर, अब मैं जो हूँ जब कार रुकेगी तो कहीं इसको डस्टबिन में डालूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा कि तुमको किसने समझाया? उन्होंने कहा मेरी टीचर ने बताया। तो ये जो स्कूल है ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, आ रहा है परिवर्तन, आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता, सुधार होगा
0: जी।
1: बिल्कुल
0: जी सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात बताई। और राष्ट्र चरित्र निर्माण जो योजना है, जो ये मुहिम है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना ही अच्छा है, और सिविक सेंस को बेहतर बनाना है ये भी जरूरी है।

0: अब सर मैं बात करना चाहता हूँ उस दौर के बारे में जब आपने स्ट्रगल शुरुआत की और अपना, जैसे आपने बताया आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि आप कहीं किराए पर एक क्लिनिक खड़ा कर सकें, तो उस समय पर क्या क्या दिक्कतें आपको आई। मैं चाहता हूँ आप इसलिए भी बताएं कि जो युवा पीढ़ी हम जैसे लोग हैं, स्ट्रगल आता है ना सामने सर, लोग फोन नहीं उठाते या पैसा नहीं होता तो बड़े स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सर आज। तो उस सबसे विपरीत परिस्थितियों में जब आप कुछ भी नहीं थे, तब आपने कैसे डील किया और कैसे आपने कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया सर?
1: वासु देखो, ये तो मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है कि अपने में विश्वास होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने में विश्वास है तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी
0: जी।
1: और अपने में विश्वास केवल यही नहीं होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, बल्कि ये भी होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा
0: जी।
1: जब आप मन में ये विश्वास करते हो तो रास्ते स्वयं निकलते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे आरंभ में अनुमति देने से मना कर दिया था, तो मैंने लिखा ये दृष्टांत अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे विरुद्ध थे कि मैं प्रैक्टिस ना करूं
0: जी।
1: जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि तुम मेरे से मांगोगे कैसा, मुझे दुकान लेनी है तो तुम इससे किराया मांगोगे, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब मैंने अपना प्रयास किया, मैं अपने गुरु से मिला, मैंने उनसे कहा कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बताया कि चलो तुम जो हो तुम फ्री में काम करने को तैयार हो, मैंने कहा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक नर्सिंग होम के अंदर वहां के मरीजों को तुम्हें फ्री देखना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: तुम्हें बैठने के लिए कमरा दिला दूंगा, तो रास्ता निकला ना
0: जी।
1: मैंने अच्छा अब कभी मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत ईमानदारी से मैंने किया। मैंने 84 नर्सिंग होम में जब उन्होंने मुझे कमरा दे दिया
0: जी,
1: और मैं उनके मरीजों को फ्री जाके निःशुल्क जाके देखता था, क्योंकि होते थे किसी दूसरे डॉक्टर के
0: जी,
1: तो अगर मेरे मन में कोई भी जरा सा भी कोई गलत भाव होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये करता कि वो मरीज वहां से टूट कर वो मेरे पास आ जाए, जैसे सामान्यतः हुआ करता है
0: जी सर।
1: मैंने कभी नहीं करा, मैंने कहा कि जो मेरा दायित्व है, बल्कि अगर कभी किसी ने मेरे से, क्योंकि मैं उस अस्पताल में ही चैम्बर में बैठता था और जो बाकी डॉक्टर थे वो बाहर से आते थे जिनके मरीज में देखा करता, तो कई बार वो आके मेरे से कहते कि डॉक्टर साहब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो छुट्टी होने के बाद,
0: अच्छा
1: तो मैं मना कर देता था, मैंने कहा मैं आपको नहीं देखूंगा, वो आपका जो डॉक्टर जिसने आपका किया आपको उन्हीं के पास जाइए।
0: अच्छा
1: तो मैंने सिद्धांतों के साथ कभी लालच में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों को ये कहूंगा कि रास्ते निकालो, अपने में विश्वास रखो कि हम सफल होंगे, अपने ज्ञान में विश्वास रखो और इस बात में विश्वास रखो कि हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना, स्वतः रास्ते निकलते हैं। फिर जब थोड़े से मेरे पास पैसे हुआ, थोड़े से जमा हो गए, तो फिर मुझे दुकान किराए की दुकान लेने की बात आई
0: जी।
1: तो उस समय तक मेरे बारे में लोगों को ज्ञान हो गया था कि भाई ये अच्छा डॉक्टर है और ये ईमानदार डॉक्टर है, ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, फायदा ही करता है, इस पे जो भी दे दो पैसा वो ले लेता है, ना भी दो तो कोई बात नहीं है। ये जब मेरे पास पता चल गई तो पास ही में थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग थी, वहां गौड़ साहब की बिल्डिंग थी
0: जी,
1: तो उनके पास एक दुकान खाली हुई।
0: अच्छा
1: मैंने उनसे पूछा कि आप मैं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने आपको पगड़ी वगैरह की बात आई कैसे हुई, हमारे एक मित्र मिल गए, उन्होंने उसको जाके कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पगड़ी नहीं लूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ आप बस किराया दे देना।
0: ठीक
1: इतना मैं कमा लेता था कि महीने का किराया निकाल दिया उस समय तक। तो मैंने देखा ना, आप अगर अच्छे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता आपको अवश्य

0: समाज इतना बुरा नहीं है कि आपको आगे बढ़ना नहीं देगा
1: जी।
0: हाँ, जैसे कि आप में ये विश्वास होना चाहिए, आपको जैसे पहाड़ से आप देखते हैं ना, जब पहाड़ में एक पानी नदी जब आप चलती है, तो मैंने अपनी जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने जीवन तरंगिनी लिखा है
1: जी,
0: है ना। तो तरंगिनी जैसे एक नदी जब पहाड़ से चलती है तो उसको कितने बड़े बड़े अवरोध सामने आते हैं ना
1: जी,
0: ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर उसको रोकते हैं
1: जी,
0: है ना। रुकती है क्या? नहीं रुक पाती, वो आती है, उनसे टकराती है और उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनके दाहिने बाहिने से वो नदी निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं कि सीधी जाती हो, कहीं उसको मुड़ना पड़ता है, कहीं उसको झुकना पड़ता है, कहीं उसको बढ़ना पड़ता है, और वो इस तरीके से करके और अपने अंतिम लक्ष्य सागर तक पहुंच जाती है। तो हमें उस नदी की तरह होना चाहिए कि सतत हमें प्रयासरत रहना है, अवरोध आएंगे जीवन में, उनका दायां बायां करके रास्ते निकलेंगे, लेकिन अपने में विश्वास कर होगा तभी होगा ये।

0: कई बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आए, कामयाबी मिलने के बाद उसके बाद भी लगातार आते ही रहे। तो जब आपके जीवन को मैं देखता हूँ तो आप जीवन भर संघर्ष ही कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, मतलब खुद से, कभी समाज से, जो भी परेशानी आई। वो जो मैनेजमेंट होता है सर, कि जब विपत्तियों का टाइम होता है, इंसान को टाइम भी मैनेज करना है, मनी भी मैनेज करना है, परिवार भी देखना है, ये स्किल कैसे कोई भी हम जैसे लोग अपने भीतर जागृत कर सकते हैं?
1: ये भी तुम्हारे वास्तु कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे जीवन में सामान्य ही नहीं बहुत बड़े बड़े विकराल समस्याएं भी आई
0: जी।
1: और वो मुख्य रूप से समस्या इसलिए थी कि मैं अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकता था, हटना चाहता नहीं था, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ था कि मैं अपने सिद्धांतों का पालन करूंगा
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या तो ये कि वही देश के अंदर हमारे भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब जगह फैला हुआ है और वो सब मेरे सामने, मेरे आड़े हाथों मुझे लेना पड़ा उनको मेरे सामने, लेकिन मैं झुका नहीं। मुझे ये विश्वास था, सत्यमेव जयते पे विश्वास था। और देखिए, वैसे तो हमारी बौद्ध मान्यता में लोग कहते हैं कि सर तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी भ्रम है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, उन्होंने नॉन कमिटल थे, उन्होंने कहा ढूंढ लो भाई, खोज का विषय है, जब मिल जाए तो बता देना, जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं भगवान का को मानने के लिए इसे तैयार नहीं हूँ। कि आप कहें कि भगवान ने तो ये जातियां बना दी, ये वर्ण बना दिए, तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा भगवान को, लेकिन अगर भगवान नहीं है ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मेरा कहना यह है कि भगवान हो ना हो, लेकिन भगवान की हमको आवश्यकता है। और हमको आवश्यकता क्यों है कि जब हमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारे सामने अवरोध पैदा कर देता है, इतना विकराल अवरोध पैदा कर देता है कि जो हम कई बार लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे। तो अगर हम भगवान की जरूरत यहाँ पर पड़ती है कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है
0: जी,
1: कि ये हम अगर कुछ भी सही काम कर रहे हैं तो कोई शक्ति है जो हमें बचाएगी, वो शक्ति किसकी है, वो ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की हमको आवश्यकता है
0: जी।
1: तो मैंने जब भी मेरे सामने ऐसे विकराल समस्याएं आई हैं, मैंने अपना सिद्धांत कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, मैं सही रास्ते पे चलता रहा और मन में ये विश्वास था कि सत्य में जाते हैं, सत्य की विजय होगी ही होगी। परसीवरेंस मैंने रखी, लगातार मैं लगा रहा और मुझे ये विश्वास था कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर है नहीं, इट इज ए मेटीरियल, लेकिन मुझे इतना बड़ा उसमें आत्मबल मिला कि मैंने उन समस्याओं का सामना किया और हर समस्या के बाद मैं विजयी होकर निकला और अधिक मजबूत होकर निकला।

0: और आज आप हमारे सामने बैठे हैं सर, और मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि न सिर्फ मेरे जैसे लोगों का, न जाने अपने असंख्य लोगों का जीवन बदला है। अस्पताल में हजारों लोग अपना रोज जीवन बदल कर जाते हैं। जब वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं वहां वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और बड़े अस्पताल जो महंगे होते हैं वहां वो जा नहीं सकते, तो उनको एकमात्र अंधेरे में रोशनी का दिया नजर आता है सुभारती अस्पताल, और पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं। मैंने खुद देखा है सर। हालांकि मैंने आपसे 2-5 मिनट मांगे थे, पर बहुत समय बीत गया, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि मेरा मन और बात करने के लिए करता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लालची हो जाता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूँ सर, हमारे श्रोताओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए खासतौर से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली दो चीजें सबसे अहम है सर। एक तो स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस है सर युवा पीढ़ी को। रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, पैसे ना कमाने का स्ट्रेस है, और सोशल मीडिया ने भी एक स्ट्रेस दिया है। तो मैं चाहता हूँ इस परिस्थिति से हम लोग कैसे निकले, इसके बारे में कुछ बताएं सर।
1: देखो, बहुत आपने जो प्रश्न पूछे ये बहुत ही ऐसे प्रश्न है जिनके बहुत ही सार्थक हैं
0: जी,
1: क्योंकि अभी बहुत सारे युवा जो हैं वो हम देखते हैं कि कोई किसी भी कारण से अपने मिशन में फेल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मिशन हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का मिशन हो, कुछ भी हो
0: जी।
1: और वो डिप्रेशन में चला जाता है, अब मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और बहुत सारे हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं
0: जी।
1: तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने में विश्वास रखिए कि आप जीतेंगे। हाँ, हर समस्या के आगे आप अगर उससे दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे तो उसके बाद जीत आपकी है। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आप अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं 2 दिन के अंदर पैसे बन जा अमीर हो जाऊं, तो ये ऐसा तो सोचना भी चाहिए। जो भी चीज बहुत जल्दी आती है वो जाती भी बहुत जल्दी है, तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें। आप आराम से अपने मिशन पे, अपने कार्य पे आगे बढ़ते रहें। अवरोध आए तो उसकी चिंता ना करें। मानसिक अवसाद का तो मतलब ही नहीं है
0: जी।
1: आप जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर हो या ना हो, आप सबसे पहला विश्वास अपने में रखिए
0: जी,
1: अपने प्रयास में रखिए, अपने ज्ञान में रखिए, और दूसरा विश्वास रखिए कि अगर आप सही हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ये विश्वास लेके आप चलिए, अपने को कभी भी कमजोर मत मानिए
0: जी।
1: और जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज के लिए, सफलता के लिए जल्दी मत करिए, लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी, हर कीमत मिलेगी
0: जी।
1: और अगर आपको कभी कोई संशय हो तो आप जाके दुकान से मेरी जीवन तरंगनी की किताबें खरीद लीजिए और उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने कितने विकराल समस्याओं का सामना किस तरीके से किया है, और मैं हर समय विजयी रहूंगा।

0: एक और संदेश में जरूर ये देना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता तो अवश्य चाहें
1: जी,
0: उसके लिए प्रयासरत भी हों
1: जी,
0: लेकिन देश को ना भूलें, देश को साथ में रखें। आप मन में ही होना चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे देश को नुकसान हो। तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का भाव आपके मन में होना चाहिए, अवश्य ही आप सफल होंगे
1: जी। सर चलते चलते सुभारती परिवार को लेकर आपका क्या विजन है, आवाम भी ये जानना चाहेगी, क्योंकि गांव में कहीं दूर कोई व्यक्ति के जब डाढ़ में दर्द होता है तो सुभारती डेंटल आने की बात करता है, क्योंकि सस्ता इलाज और अच्छा इलाज यही हो सकता है। ऐसी सुभारती अस्पताल है हमारा, तो इन सब को लेकर आपका क्या विजन है, आपकी क्या इच्छा है, जरा बताएं।
0: मेरा सुभारती अस्पताल और सुभारती शिक्षण संस्थाओं के संबंध में मेरा विजन और मेरा मिशन यही है कि समाज के जो कम से कमजोर वर्ग है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, पैसा उसके बीच में आड़े नहीं आएगा, ये मेरा वादा है
1: जी।
0: चाहे उस किसी भी तरह का इलाज हो, उस पैसे में उसको कभी कोई समस्या नहीं होगी, उस पे है नहीं है कितना है ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन उसको निराशा नहीं होगी, उसका इलाज यहाँ पर होगा। ये मैंने न केवल मैंने इसका पालन किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जो कि अब आगे इसको संभाल रहे हैं और संभालेंगे, वो इस बात में मेरी तरह से पूरी तरह से 100% मेरे से सहमत हैं और मेरे साथ उसको लेकर चल रहे हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें, सब लोग जाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फीस देने के नहीं है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास इस तरह की योजना है कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे या कम है तो कम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़कर उसमें कार्य करना है समाज के लिए। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिससे कि कोई भी आदमी को ये भी महसूस ना हो कि भाई मेरे को तो पैसे नहीं दे तो मुझे मजबूर होके किसी के रहम और करम पे पढ़ना पड़ रहा है। हम तो ऑफर दे रहे हैं ना कि भाई आपको हम पूरी रियायत दे रहे हैं जितनी आप चाहते हैं, लेकिन बस ये वादा है कि उसके बाद हमारे साथ समाज को बनाने में, समाज के निर्माण में तुम हमारा साथ देना, तो कितना सुंदर है। हम लोग जॉब पूरी कर लेते हैं उसके बाद नौकरी भी अपने आप देते हैं, उसको सैलरी भी हम देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वादा है, सुभारती का मिशन भी है और सुभारती का वादा भी है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी होगा उसको चिकित्सा और शिक्षा दोनों सुविधाएं उसको अवश्य मिलेंगी। आप आए और आप हमारे ग्रुप में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो हमारे विभिन्न प्रतिनिधि हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये आजाद हिंद रेडियो भी आपका है, आप से ही मिल लें और आप हमारे तक पहुंचा दें उनकी बातें, तो हम उनको कभी निराश नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेश है और यही मेरा आपके लिए वादा है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। ये आपके साथ जो पॉडकास्ट हुआ, जो बैठकर वार्तालाप हुआ, ये मेरे जीवन का रूपांतरित कर देने वाला समय है सर, और आप मेरे हीरो हैं, क्योंकि जीवन के कई खतरनाक और दर्द भरे मोड़ पर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का, परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी, बिना खड़ग, बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटि कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है, तो राष्ट्र अनुभूति नाम की इस पुस्तक में इसके लेखक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने हर विषय को ले लिया है, यानी हर वो संस्कार जो हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता मित्रों कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तक हमको सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका नाम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस अलौकिक कार्यक्रम में। ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा क्योंकि एक एक विषय हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। तो चलिए फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और हमारा एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: आप सुन रहे हैं सुभारती सरगम, वास्तु कृष्णा के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड्स, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द जनरल वॉर सिचुएशन।
2: इंकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद,
0: आजाद हिंद।

0: जिंदाबाद। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
1: जय हिंद,
2: जय हिंद,
1: जय हिंद,
2: जय हिंद।
3: पर आपने याद है क्या, हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या फिर मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। इन्हों सलाह।
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अभी?
1: नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए।
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ। तो आदमी जो है, आदमी कितने वर्ष का है इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक,
0: जी
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया है, मुझे इस देश ने बहुत दिया है,
0: जी
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ,
0: जी
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है,
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक कर रखा हुआ है,
0: जी
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ।
0: जी, एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। ये तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है,
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। जिसके पास पैसा तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, यही हमारा

0: स्लोगन है
1: जी,
0: हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
1: होना ही चाहिए,
0: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या असर है
1: जी।
0: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो ये मेरा सोच है
1: जी जी,
0: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा। तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूँ जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: दिल देश प्रेम और खून में उबाल रखो, देश के लिए कुछ नया करने का जज्बात रखो। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजी वंशी के साथ। और आज है 26 जुलाई। आज का दिन बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। ये वही दिन था जब हमने कारगिल पर विजय पताका लहराई थी। आज इस शुभ मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आप कैप्टन अमरेक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है सर?
2: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाकर और मुझे जो इज्जत अफजाई करी है। पहले
1: जी,
2: मैं इस पावन दिन 26 जुलाई, मुझे याद आता है 26 जुलाई 1999।

0: भारतीय सेना ने आर्म फोर्सेस ने
1: जी
0: पाकिस्तान पर फतेह करके और कारगिल में अपना पताका लहराया था
1: जी
0: और तिरंगा लहराया था। ये बहुत ही खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, लेकिन साथ ही साथ आज हम उन 559 शहीद ऑफिसर्स जेसीओस एवं जवानों को नमन करते हैं सुभारती परिवार की तरफ से, क्योंकि यदि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती इस लड़ाई में, इस युद्ध में, तो आज जिस तरह हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमें नसीब ना होता।
1: जी बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जिस तरह के माहौल में आज हम सांस ले रहे हैं शायद आज फिर दशा कुछ और ही होती।
0: और ये यदि आप देखिए तो जब से देश आजाद हुआ
1: जी,
0: पार्टीशन हुआ, तब से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का एक ही मुद्दा रहा है, किसी न किसी तरह जम्मू और कश्मीर पर कब्जा किया जाए। और उसके लिए वे लगातार एक बार, दो बार, तीन बार लगातार भारत पर हमला करते रहे, हमारे देश पर हमला करते रहे, लेकिन हर बार उन्होंने हमारी सेना से और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे मुंह की खाई
1: जी।
0: और एक बार भी विजयी नहीं हो पाए, क्योंकि जितने उनके इरादे नापाक हैं उतने ही हमारे इरादे बुलंद हैं, जिस वजह से, जिसके कारण हम हमेशा विजयी हुए। हमारा जो जज्बा है अपने देश के प्रति
1: जी,
0: अपने लोगों के प्रति
1: जी,
0: अपनी धरती के प्रति, उसकी वजह से हम हर जंग में, हर युद्ध में विजयी हुए।
1: तो सर कहना चाहेंगे कि इरादे अगर पाक हों, नेक हों, तो जीत तो आपकी तय ही है।
0: बिल्कुल आपने सही फरमाया।
2: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। कहीं मत जाइएगा।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो, RJ वंशी के साथ।

0: हम आज के दिन की महत्व की बात करेंगे
1: जी।
0: सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा
1: जी।
0: जब हमारा देश आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ, उसी दिन से पाकिस्तान का एक ही एजेंडा था, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो आज तक चलता आ रहा है। 1947 में पहली बार जब आजादी डिक्लेयर हुई, उसके बाद ही, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने J&K पर हमला शुरू। तब स्टेटस अलग था J&K स्टेट का
1: जी।
0: वहाँ पर कब्जा करने के लिए काबिलियों ने, सबने आकर एक तरह से इंट्रूजन करना शुरू कर दी
1: जी।
0: उस टाइम पे 27 अक्टूबर 1947 ये दिन था जब पहली बार भारतीय सेना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद, महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया था 26 अक्टूबर को 1947, और भारतीय सेना को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था कि उन्हें पाकिस्तानी जो सेना और पाकिस्तान काबिली लोग थे उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए।
1: अच्छा।
0: तो 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार श्रीनगर एयरफील्ड पर हमारी सेना वहाँ पर पहुँची।
1: सर, आपने काफी सारी बातें हमें ब्रीफ की हैं और आप बता भी रहे हैं कि आज के दिन की क्या महत्वता हो जाती है, क्या इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। आपसे ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कारगिल विजय दिवस ऐसे ही हासिल नहीं हुआ था, ऐसे ही हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और बलिदान भी है हमारे वीर जवानों का। इसके बारे में चर्चा सर से जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। और आज हम जान रहे हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर, कहीं मत जाइएगा।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो आरजे वंशी के साथ। You are listening to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी, और आज है 26 जुलाई, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीयों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा गर्व करने वाली बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ इसी मौके पर मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी, सुभारती यूनिवर्सिटी से। सर, आपसे बातें हो रही हैं इस बारे में। सर, कारगिल विजय दिवस के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या रही, या इसकी भूमिका किस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारे भारत के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर।
1: इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले आजादी के समय से जिस तरह पाकिस्तान ने निरंतर हमारे देश पर हमले करते रहे, और ये उनकी सोच रही कि किसी न किसी तरह जम्मू और कश्मीर पर वो कब्जा करेंगे।
0: जी,
1: अभी मैंने आपको 1947 की बात बताई थी।
0: जी,
1: 1947-48 में ये इंडो पाक वॉर चलता रहा, और आखिर में एक एग्रीमेंट के तहत, जिसे कि कराची एग्रीमेंट कहा जाता है, सीज फायर लाइन को डिक्लेयर किया गया इस एग्रीमेंट में।
0: जी,
1: ये एग्रीमेंट 28 अप्रैल 1949 को हुई थी कराची में, और इस एग्रीमेंट में एक सीज फायर लाइन, एक नक्शा बनाया गया कि जो जहां पर है यथास्थिति बनाए रहे।
0: जी,
1: हुआ क्या था कि कुछ लोग वहां से, पाकिस्तान से, जब जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच गए थे, और एक जब सीज फायर हुआ तो वो एक स्थिति पे पहुंच गए थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, तो उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, जो हमारी सीज फायर लाइन के उस तरफ था।
0: अच्छा।
1: उस टाइम पे उसका नाम सीज फायर लाइन दिया गया।
0: जी।
1: और उसके हमारी तरफ जो थी भारतीय सेना, और उस तरफ पाकिस्तानी सेना, तो उन्हें बता दिया, इस एग्रीमेंट में बता दिया गया कि ये यथास्थिति बना के रखेंगे, और ये जो लाइन है जिसके दोनों तरफ हम लोग बैठे हैं, उसे सीज फायर लाइन कहा जाएगा।
0: जी।
1: साथ ही ये भी बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ जाएगा।
0: अच्छा।
1: इसका डिसीजन होगा एक प्लेबिसाइट से।
0: अच्छा।
1: प्लेबिसाइट का मतलब होता है लोगों से वोटिंग कराकर, उनका मत जानकर।
0: जी।
1: लेकिन उसके लिए एक और कंडीशन रखी गई कि उससे पहले यथास्थिति बनानी पड़ेगी कि जो जहां पर पाकिस्तान वापस, पाकिस्तान हमारी सेना वापस जहां पर थी उस लाइन पे चली जाएगी।
0: जी।
1: और उसके बाद वो प्लेबिसाइट होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जगह छोड़ने से मना कर।
0: अच्छा।
1: जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो वहाँ बने रहे।
0: जी।
1: तो प्लेबिसाइट हो नहीं पाया। प्लेबिसाइट नहीं हो पाया तो ये एग्रीमेंट भी एक तरह से निरस्त हो गया।
0: जी।
1: लेकिन जो जहाँ था वो वहाँ बैठ गया, और ये भी डिसीजन हुआ कि इस सीज फायर लाइन का कोई उल्लंघन नहीं करे,
0: जिसको हम आज LOC के नाम से जानते।
1: बाद में उसे LOC के नाम से जाना गया, तब सीज फायर लाइन, जैसे मैंने आपको बताया, वो सीज फायर लाइन, इस एग्रीमेंट का नाम कराची सीज फायर एग्रीमेंट था, जो 28 अप्रैल 1949 को। फिर आपको हिस्ट्री में पता है 71 का वॉर हुआ, जिसमें हम लोगों ने, इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, सबको पता है, 93,000 उनके बंदी बनाए सैनिक।
0: जी।
1: उसके बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ।
0: जी।
1: जो 6 जुलाई 1972 को हुआ, उसमें इसी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, और ये बताया गया कि कोई भी हमारे बीच में मुद्दा होगा, इन दोनों देशों के बीच में मुद्दा होगा।
0: जी।
1: तो वो मुद्दा आपसी बातचीत, यानी बायलैटरल टॉक्स से सॉल्व होगा, और उसमें कोई तीसरी शक्ति भाग नहीं लेगी, हिस्सा नहीं लेगी। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। उससे पहले हमने बताया 1949 में सीज फायर एग्रीमेंट, कराची सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था।
0: जी।
1: अब ये शिमला एग्रीमेंट हुआ।
0: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। कहीं मत जाइएगा।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है।

सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो, आरजे वंशी के साथ।

0: शिमला एग्रीमेंट के तहत 49 के बाद, अब मैं वापस 49 में जा रहा हूँ, एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप
1: जी,
0: इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में अपनी अपनी उन्होंने स्टेशन बना लिया कि इस सीज फायर का उल्लंघन ना होने के लिए वो मॉनिटर करेंगे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम यूएन का हिस्सा थे, हम भी यूएन के भागीदार थे, मेंबर्स थे, तो सदस्य थे, तो हमने भी उसे एग्रीमेंट को मान लिया कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप दोनों तरफ बैठेगा,
1: मॉनिटरिंग
0: करेगा सीज फायर की
1: जी।
0: लेकिन एक तरह से जब 1972 का एग्रीमेंट हुआ, जब ये डिसाइड हुआ दोनों देशों के बीच कि कोई भी आपसी मुद्दा होगा वो बायलैटरली रिजॉल्व होगा, तो उसके बाद यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की कोई महत्वता नहीं रही। हालांकि आज के दिन भी यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप
1: मौजूद है
0: श्रीनगर में और उधर रावलपिंडी में और वेरियस छोटे छोटे मिलिट्री स्टेशंस बना रखे हैं जहाँ पर वो मौजूद है। तो ये थी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रहा है कि लगातार, चाहे सीज फायर के लाइन कह लो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल कह लो, उन्होंने लगातार उसका उल्लंघन किया। वो ऐसा ही एक उल्लंघन मई की फर्स्ट वीक में 1999 में पाकिस्तानियों ने फिर से किया
1: जी,
0: जब मुशर्रफ चीफ थे
1: जी। सर, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप की अगर इजाजत हो तो आप बताइएगा कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: हम ए मेरे वतन के लोगों
1: जी, बिल्कुल,
0: जरा आँख में भर, आज उस गाने को यदि हम आज भी याद करें, बहुत पुराना गाना है, आज भी याद करें और सुने
1: जी,
0: आँखों में आंसू आ जाते हैं,
1: आने भी चाहिए।
0: लता जी का गाया हुआ ये गीत
1: जी। सर, तो दोस्तों अभी इंजॉय करेंगे ए मेरे वतन के लोगों, और उसके बाद बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा आपके साथ। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार 1999 में फर्स्ट वीक में ऐसा क्या किया था पाकिस्तानी सेना ने कि जिसके बाद कारगिल युद्ध की घोषणा हुई। सर, हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर, कहीं मत जाइएगा।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो RJ वंशी के साथ।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आजीवंशी और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज कारगिल विजय दिवस, और आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खास हो जाता है। इसी मौके पर हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में पराक्रमी कर्नल राजेश त्यागी जी। सर, जब जब आप आते हैं, आपसे बातचीत होती है तो बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है, तो ये तो हमारा सौभाग्य ही है कि हमें इन सब बातों के बारे में पता चलता है। आज आपसे हम इस बारे में बातें कर रहे हैं कि कारगिल जो युद्ध हुआ है उसकी क्या भूमिका रही है, या किस तरीके से ये कंडीशंस बनी कि कारगिल युद्ध करना ही पड़ा, इसके बारे में सर विस्तार से बताइएगा।
1: अगेन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा।
0: जी,
1: बैकग्राउंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट से काफी उसमें अंक थे।
0: जी,
1: उसमें से एक अंक था कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में,
0: जी,
1: खासकर ये द्रास, कारगिल, बटालेक, इन सब एरिया में कुछ एक पोस्ट ऐसी हैं जो अमानवीय पोस्ट हैं, जिसपे एक मानव का रहना कुछ महीनों के लिए बड़ा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विंटर कैजुअलिटी होने का बड़ा खतरा बना रहता है। तो एक एग्रीमेंट का अंक ये भी था कि कुछ पोस्ट अंकित पोस्ट थी वो, और उन्हें नामांकित किया गया था कि ये पोस्ट इस दौरान में, यानी सर्दियों के मौसम में, उन महीनों में खाली की जाएंगी, और कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल का, दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अब यही बात हम आगे चलें तो उसी के तहत सितंबर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर, लगभग उन महीनों, सर्दी के महीने जब शुरू हुए और स्नोफॉल जब शुरू हुआ, तो कुछ पोस्ट भारत की तरफ से उस एग्रीमेंट के तहत खाली
0: कर दी गई। जी,
1: जिसमें से एक बजरंग पोस्ट,
0: जी,
1: जो कि हालांकि बजरंग पोस्ट उस समय खाली नहीं करी गई।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां के जो कमान अधिकारी थे, फोर्ट जाट के कमान अधिकारी, उन्होंने एक तरह से मना कर दिया कि मैं अपने जवानों को वहां से पोस्ट से नहीं उठाऊंगा, लेकिन फौज में हुक्म तो हुक्म है।
0: हाँ जी।
1: और सेना में हुक्म हुक्म है, आदेशों का पालन करना बिल्कुल आवश्यक है।
0: तो
1: फिर लास्ट में करीब 1 मार्च और 2 मार्च की रात को बजरंग पोस्ट को खाली करा गया। ऐसे ही और भी पोस्ट थी जिन्हें अक्टूबर नवंबर इनमें खाली कर दिया गया था पूरे क्षेत्र में।
0: जी।
1: पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। जनरल मुशर्रफ का प्लान था कि हम उन पोस्ट जो खाली की जाती है उन पे जाके बैठ जाएं, और जो एक मेन लाइफ लाइन नेशनल हाईवे 1 जो कि वहाँ से गुजरती है, श्रीनगर से होती हुई लेह की तरफ, ये है श्रीनगर से लेह तक,
0: जी,
1: उस रोड को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए इन पोस्टों पे कब्जा कर लिया।
0: अच्छा।
1: और उससे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने से उसे हर बार बार इंटरडिक्ट कर सकते थे, उस पे मूवमेंट एक ही लाइफ लाइन है ये, और उसे हम रोक सकते थे।
0: अच्छा।
1: पाकिस्तानी की ये सोच थी कि पाकिस्तानी उन्हें रोक देंगे।

0: ये वो जाकर वहाँ पर जो हाई पोस्ट थी, हाई एल्टीट्यूड पोस्ट थी, उन पर जाकर बैठ गए।
1: अच्छा,
0: ये था उसका बैकग्राउंड।
2: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। कहीं मत जाइएगा।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो RJ वंशी के साथ।

0: ये शुरू हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ मई में, जब पता चला कि कुछ लोग जो कि भारतीय सेना के नहीं है, हथियारों के साथ
1: जी,
0: दो तीन जगह बटालिक सेक्टर में और एक दो जगह और देखे गए थे। जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने उन्हें ऐसा पास ऑफ करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने कि वो पाकिस्तानी आर्मी की सेना के लोग नहीं है बल्कि मुजाहिदीन हैं, जो कि मिलिटेंट्स हैं, जो कि कश्मीर के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनका हमेशा से एक टैक्टिक्स रही है टैक्टिक्स रही है ये पाकिस्तान आर्मी की
1: जी,
0: ताकि पाकिस्तान आर्मी का नाम ना आए कि हमने तो उल्लंघन किया नहीं, ये तो मिलिटेंट से, ये तो किसी लॉ को सुनते नहीं है, ये तो लीगली बाउंड है नहीं, और ये कहीं भी चलते रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। ये उनका तरीका था कि उन्हें मुजाहिदीन और मिलिटेंट्स बताकर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये बताकर, और अपनी पाकिस्तानी सेना को अक्रॉस भेज दिया। जब ये वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, फोर जाट काक्सर सेक्टर में थी, वहाँ से एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, उन्हें मुश्किल से 4-5 महीने हुए थे यूनिट को ज्वाइन करे
1: जी।
0: वो वहाँ पर पोस्ट पर थे, आसपास की पोस्ट पर, उनके साथ 5 और जवान थे
1: जी।
0: उनको ये टास्क दिया गया कि जाकर वापस बजरंग पोस्ट को वापस जाके ऑक्यूपाई करें और जाके रेकी करके आए कि वहाँ कहीं दुश्मन तो आकर बैठ नहीं गया। इसी सिलसिले में ये पेट्रोल सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया फोर जाट, और उनके साथ फोर जाट के 5 जवान, ये आगे बढ़े। लेकिन जब बजरंग के पास पहुँचे तो इन पर भारी तादाद में गोलीबारी शुरू हो गई। तो उन्हें पता चला कि वहाँ कुछ ज्यादा लोग बैठे हैं। उन्होंने आड़ ली और वापस जवाबी फायर करना शुरू किया
1: जी।
0: लेकिन ये कुल 6 लोग थे,
1: छह लोग थे
0: और पाकिस्तानी करीब 70-80 लोग उस पोस्ट पर जाकर बैठ गए थे। तो लड़ते लड़ते वहाँ पर उनके कब्जे में आ गए, क्योंकि वो लोग ज्यादा थे
1: जी।
0: लेकिन ये लोग बहुत बहादुरी से लड़े और आगे बढ़ते रहे। जब इनको कब्जे में लिया, इनसे उन्होंने इंटरोगेशन शुरू किया और इंडियन आर्मी और अपनी यूनिट के बारे में बताने को कोशिश की कि उनके बारे में बताएं, और उन्हें तरह तरह के यातनाएं दी, तरह तरह के टॉर्चर किए, और अंत में उन्हें टॉर्चर करके उन्हें मार दिया, एक तरह से उनकी हत्या कर दी
1: जी।
0: लेकिन वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उन्होंने अपने देश के बारे में या अपनी सेना के बारे में या अपनी पलटन के बारे में

0: भी शब्द नहीं कहा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह की कई गाथाएं हैं और यहाँ से शुरू हुआ था कारगिल युद्ध
1: जी।
0: फिर कारगिल युद्ध में जो हुआ काफी समय लगा, करीब ढाई से तीन महीना लगा, क्योंकि ऐसी ऐसी पोस्ट पर कब्जा उन्होंने कर लिया था जो कि बहुत ऊंचाई पे थी और उन पर अटैक करना लगभग नामुमकिन था। वो सिर्फ भारतीय सेना है जिसमें इतना जज्बा है कि उन्होंने वापस उन्हें कैप्चर किया और फिर आया 26 जुलाई का दिन जब हमने अपना तिरंगा कारगिल क्षेत्र में फहरा दिया। हर हाइट पर, हर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया था तब तक, और ऑपरेशन विजय को समाप्त घोषित किया गया विजय पताका के साथ, इसलिए वो कारगिल विजय दिवस बना 26 जुलाई।
2: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर, कहीं मत जाइएगा।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो, RJ वंशी के साथ।

इस पूरे लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान हमारे कई जवान, कई ऑफिसर्स और कई जेसीओस शहीद हुए और कई हताहत हुए, और उसमें जो आज का फिगर है वो 559 जवान। लेकिन जितने हमारे शहीद हुए उससे कई गुना ज्यादा हमने पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई, जो कि वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे कि वो पाकिस्तान आर्मी के हैं, लेकिन हमें वहाँ प्रूफ मिले, उनके आई कार्ड्स मिले, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड्स मिले, जिससे ये प्रूव हो गया। हालांकि उन्होंने अपने मृत लोगों को वापस लेने से इनकार कर दिया कि ये हमारे

0: बार बार आता है, अगर हम कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करें या कारगिल ऑपरेशन की बात करें, तो आपके हिसाब से वो कौन कौन से लोग रहे जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा या जिन्होंने सभी को लीड किया ताकि एक प्रॉपर वे में हम विजय प्राप्त कर सकें?
1: प्रॉपर ये इस तरह का सवाल है कि आप जो मेरे से सवाल पूछ रही हैं कि किसको श्रेय जाता है इस विजय का, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के ऑफिसर
0: जी,
1: जो उस समय में उस लड़ाई में लड़े, हर एक जेसीओ
0: जी,
1: हर एक जवान जिन्होंने हिस्सा लिया, कई उनमें से शहीद हो गए, ये श्रेय पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जाता है
0: जी,
1: जो हमें विजय हासिल करी, और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी बहुत इसका
0: श्रेय
1: जाता है। तो कोई एक नाम लेना
0: ना इंसाफी
1: होगी उन तमाम लोगों को, क्योंकि कुछ शहीद हो गए, कुछ लोग बच के भी आ गए, कुछ लोग बच गए, शहीद नहीं हुए, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें।
0: बिल्कुल सर,
1: बहुत कंट्रीब्यूशन है।
2: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर, कहीं मत जाइएगा।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो RJ वंशी के साथ।

0: सर आप उस वक्त कहाँ पर थे जब ये कारगिल?
1: जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ
0: जी,
1: तो मैं काक्सर नाम की एक जगह में, फोर जाट मेरी पलटन है जिसमें सौरभ कालिया, अमित भारद्वाज मेरी पलटन के ऑफिसर हैं, और मैं वहीं पर था।
0: अच्छा।
1: काक्सर में था मैं।
0: तो आप सभी चीजों को देख पा रहे थे?
1: मैं वहाँ से देख पा रहा था, हिस्सा भी लिया उसमें
0: जी।
1: और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए
0: जी।
1: उस दौरान में जिनका अभी भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नींद नहीं आती है कई बार
0: जी।
1: तो इस तरह के काफी किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की कुछ बातें हैं
0: जी।
1: लेकिन जो जग जाहिर है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही अमानवीयता के साथ वहां पर कार्य किया
0: जी।
1: और जिसका कि बहुत खेद है हमें
0: जी।
1: कि एक सैनिक होते हुए इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने अपना जज्बा बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखी और हमारी बहादुरी, भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से, और इसका श्रेय काफी कुछ आर्टिलरी को भी जाता है, एयरफोर्स को भी जाता है
0: जी।
1: इंडियन एयरफोर्स को भी, आर्टिलरी को भी जाता है, जिन्होंने ऐसी बमबारी करी वहां पर कि बिल्कुल ध्वस्त कर दिया पाकिस्तानी सेना को
0: जी।
1: तो ये श्रेय उनको सभी को जाता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
0: जी। सर जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था इस बारे में आपने कि जो बजरंग पोस्ट थी वो काफी हाई एल्टीट्यूड पर रही, तो क्योंकि वो लोग पहले से ही वहाँ पर तैनात थे, हम लोग अपनी पोस्ट खाली कर चुके थे, तो जब दोबारा से वहाँ पर जाना था हमें तो कितनी ज्यादा दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि हमें नीचे से जाना था, हम लोग उनकी ऑब्जर्वेशन में भी रहे होंगे, जैसे कि आपने बताया कि 6 लोग पहले गए थे लेकिन बाद में उनके साथ ठीक नहीं हुआ, तो उस सब की या ऐसी कंडीशन जब बनती है तो किस तरीके से हमारी सेना काम करती है या वो कितनी विषम परिस्थितियाँ हो जाती है?
1: मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे से ये सवाल किया और उससे ये भी मुझे जानकारी मिली कि आप इस मुद्दे को समझती हैं, इस पॉइंट को समझती हैं कि जब कोई पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है
0: जी
1: और कोई नीचे से अटैक कर रहा है, तो आप ये इमेजिन कर पा रही हैं कि कितना मुश्किल है।
0: बहुत मुश्किल है।
1: गोलीबारी के नीचे आए हैं, ऑब्जर्वेशन के नीचे, ऑब्जर्व फायर के नीचे हैं
0: जी।
1: यानी कि दुश्मन आपको देखकर गोली चला रहा है और आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आर्टिलरी की, जो मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिलरी ने इस तरह से गोलाबारी करी उस फीचर के ऊपर
0: जी,
1: इस तरह से ध्वस्त कर दिया बिल्कुल कि उनका हेड डाउन कर दिया वो, ताकि ऑब्जर्व ना कर पाए, फ्रीली आपको देख ना पाए, फ्रीली आप पर फायर ना कर पाए
0: जी।
1: उनका फायर उन्होंने दबा दिया और जब ऐसा होता है तो क्षति बहुत होती है दोनों तरफ
0: जी,
1: दोनों तरफ, क्योंकि उनकी भी आर्टिलरी फायर कर रही थी, वो हमारे ऊपर कर रही थी, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि इस स्थिति में कितना नुकसान होता है। लेकिन इस नुकसान के बावजूद ये सिर्फ हमारा जज्बा है, ये हमारी बहादुरी है, बहादुरी की बहुत गाथाएं हैं
0: जी सर।
1: इस कारगिल युद्ध में बहादुरी की बहुत गाथा, मैं किसी एक को ऐसे नहीं बता सकता कि ये सबसे बहादुर था, अनेकों ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान जिन्होंने बहादुरी से वहाँ पर काम किया, लड़ाई करी, युद्ध किया, और जैसा मैंने पहले भी बताया कई शहीद हो गए और कई सारे लोग आज भी जिंदा हैं। एक वहाँ पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव थे
0: जी,
1: जो आज भी परमवीर चक्र हैं वो, आज भी आज कैप्टन है वो, ऑनररी कैप्टन रिटायर्ड
0: जी,
1: और वो आज भी जिंदा है। परमवीर चक्र ज्यादातर ये देखा गया मरणोपरांत होता है
0: हाँ।
1: लेकिन उनका इतना अच्छा, उत्तम वो था, सर्वोत्तम उन्होंने जो लड़ाई करी
0: जी,
1: जिसकी वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें जीवित होते हुए परमवीर चक्र मिला।
0: तो ये तो सर बहुत ही पराक्रम की बात हो जाती है हमारी कंट्री के लिए, हमारे भारत के लिए।
2: बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर, कहीं मत जाइएगा।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो आरजे वंशी के साथ। सर, कुछ ना बायोपिक्स भी बनी हुई है हमारे बॉलीवुड की, अगर बात करें तो काफी सारी ऐसी आपने बायोपिक्स के बारे में सुना होगा, जहां पर मैंने भी कुछ चीजें देखी। काफी सारी ऐसी मूवीज आती रहती हैं जिसमें ये देखा गया था कि दिन में पॉसिबल ही नहीं था चढ़ाई करना, तो इसीलिए रात का समय चुना गया कि हम आगे बढ़ेंगे और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इस बात में सच्चाई है?
1: इस बात में सच्चाई 100% है। देखिए, दिन के टाइम
0: जी
1: आप एक तो ऑब्जर्वेशन के नीचे हैं, एक पहाड़ी के ऊपर कोई बैठा है, आप नीचे से चल रहे हैं।
0: जी सर,
1: एक तो ऑब्जर्वेशन के नीचे हैं, वो भी दिन की ऑब्जर्वेशन जिसमें कोई शक ही शुभा नहीं रहती है।
0: जी,
1: कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसे बोलते हैं कि दिन के टाइम आप अटैक कर दें, खासकर उस समय में जब हम इतने इक्विपमेंट के साथ भी लैस नहीं थे कि नाइट विजन हम रात को भी देख पाए। हालांकि नाइट विजन डिवाइसेस थे लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थे कि हर कोई सब चीजें देख सके। तो उनके पास भी उतना नहीं था, हमारे पास भी नहीं था, तो उसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन अटैक जो है, सारे अटैक्स जो है वो रात के टाइम ही, असॉल्ट सारे रात के टाइम ही गए हैं।
0: अच्छा।
1: जबकि दुश्मन भी हमें ठीक से ना देख सके, ऑब्जर्वेशन उसकी ना हो। डिसएडवांटेज हमें था कि हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन वो काफी कुछ ऑफसेट हो जाता है उस वजह से कि उनको दिखाई ना दे, ऐसे टाइम पे हम लोग अटैक करें, ऊपर चढ़े।
0: तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमारी भारतीय सेना,
1: ये टैक्टिक्स होती है जिसकी वजह से ये हमें जो विजय भी हासिल हुई है उसका यही कारण है, अच्छी टैक्टिक्स, अच्छी स्ट्रेटजी लगाना। और मैंने आपको बार बार जो बात बताता हूँ, बहादुरी, जज्बा, उनके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है।
0: जी बिल्कुल सर। सर, आज के युवा के लिए आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के युवा, देखिए, मैं यहाँ पर सुभारती डिफेंस एकेडमी में युवाओं से ही डील कर रहा हूँ।
0: जी,
1: मेरे पास वो युवा हैं जो अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं,
0: जी,
1: जो तैयारी कर रहे हैं,
0: जी,
1: जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में ऑफिसर्स बनने के लिए NDA और CDS की रिटर्न कोचिंग कर रहे हैं,
0: जी,
1: कुछ मेरे पास SSB के लिए आते हैं बच्चे इंटरव्यू के लिए, और इनमें से काफी बच्चे मेरे पास, उन्होंने सफलता भी हासिल करी है।
0: बहुत अच्छे से।
1: तो मैं उन बच्चों में वो जज्बा देखता हूँ, जो जज्बा मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है, जो हम सब में था कि हम भारतीय सेना में ज्वाइन करके और हम इस देश में ऑफिसर, जवान, आर्मी के बनकर और इस देश के लिए लड़ेंगे, और वो हमारा सपना भी पूरा हुआ।
0: जी।
1: और मैं इन जवान बच्चों को यही बताना चाहता हूँ।

0: कि आप जो भी कार्य करें उसमें मेहनत और जज्बा, ये दो चीजें यदि आपके अंदर हैं तो आप हमेशा सफल होंगे
1: जी।
0: तो ये मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा।
1: सर, जैसा कि आज हमने बातें की कारगिल विजय दिवस के बारे में, जो कि हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है, और इसकी गाथा के बारे में लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें आसपास से मिल जाते हैं जिन्हें तथ्यों के बारे में पता नहीं होता। सिर्फ उन्हें दिन का तो मालूम है, बट उसके पीछे की कहानी क्या रही, कितनी शहादतें हुई, कितने लोग शहीद हुए, या कितने लोगों ने अदम्य साहस भरकर आज के दिन को प्राप्त किया, अपना परिचय लहराया वहाँ पर, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। बातों का सिलसिला चलता रहेगा कर्नल राजेश त्यागी जी के साथ। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। कहीं मत जाइएगा।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास

0: डिनर गेट टुगेदर हो। द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो आरजे वंशी के साथ। सर, अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर आए दिन कुछ ऐसी मूवीज आती रहती हैं जिसमें ऐसी घटनाओं को दिखाया जाता है कि हमारे देश के साहसी वीर जवानों ने क्या क्या किया हमारे देश को बचाने के लिए। तो जब ऐसी मूवीज आती हैं या जब ऐसी बातों के बारे में बात की जाती है, तो क्योंकि आप भी आर्मी पर्सन ही है, तो आपको कैसा महसूस होता है?
1: देखिए, ये एक जज्बा लोगों का दिखाता है
0: जी।
1: और फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है, फिल्म इंडस्ट्री स्टोरीज को बेचती है
0: जी।
1: लेकिन मुझे खुशी है कि स्टोरीज जो चुनते हैं वो
0: जी
1: इस तरह की स्टोरीज भी चुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने की। हालांकि थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर देते हैं, लेकिन काफी कुछ सच्चे तथ्य उसमें होते हैं
0: जी।
1: तो वो देख के अच्छा लगता है। कई बार तो थोड़ी हंसी भी आती है जब वो कुछ चीजें ओवरडू कर देते हैं
0: जी।
1: जैसे कि आप यदि देखें, गाने गाते हैं उसमें
0: जी जी,
1: तो आप सोच सकते हैं लड़ाई के बीच में चिट्ठियां पढ़ के कोई गाना गा रहा है,
0: कैसे गा सकते हैं?
1: ऐसा तो सच्चाई में नहीं होता
0: जी।
1: लेकिन वो थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया जाता है, तो उसपे थोड़ी सी हमें हंसी भी आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें कम से कम ये सोच तो है
0: जी
1: कि जनता तक इस बात को पहुंचाएं कि एक लीडर, एक आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी का जवान, एक आर्मी जैसे किस तरह की जिंदगी जी रहा है, किस तरह की परिस्थितियों में लड़ रहा है, किस तरह की परिस्थितियों में काम कर रहा है, और उसके बाद भी चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वो दर्शाते हैं, उससे बहुत गर्व महसूस होता है और लगता है कि हाँ, वो लोग भी हमारे बारे में सोचते हैं और जनता तक ये बातें पहुंचती हैं
0: जी। कि आखिरकार इस टाइप का कंटेंट भी लोगों को यू नो पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है।

0: बहुत खूब सर। और जब आप जैसे पराक्रमी लोगों से ऐसे गाने सुनते हैं ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है सर। और आप शायद जिस फील से गाते हैं, कोई और इस फील से गा ही नहीं पाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और आज के इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाया, लोगों तक बातें पहुंचाई कि आज के दिन की आखिरकार क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है और क्यों ये हम सेलिब्रेट करते हैं।
1: मैं आपको एक बात बताकर इस हमारे जो सेशन है
0: जी,
1: उसे एंड करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सर।
1: मैं आपको बताना चाहूंगा, सुभारती यूनिवर्सिटी एक इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे देश में होगी
0: जी,
1: जिसमें वो जज्बा है और वो सोच है, वो विचार है कि भारतीय सेना, भारतीय आर्म फोर्सेस
0: जी,
1: एयरफोर्स, नेवी को किस तरह से ऑनर किया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे माननीय संस्थापक जी, उनकी सोच की वजह से आज यदि आप परिसर में घूमें तो आप देखिए हर एक कॉलेज, हर एक संस्थान, हर एक सड़क, हर एक किसी ना किसी फ्रीडम फाइटर, इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य या किसी ऐसे लीडर जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके नाम से है। और अब जो लेटेस्ट एंट्री हुई है
0: जी,
1: वो हुई है एक कारगिल शहीद उपवन
0: जी,
1: जिसमें अभी जो मैंने आपको बताया 559 जो शहीद हुए, उन हर एक के नाम पर एक पौधा लगाया गया और आज वो पेड़ बन गए हैं। और मुझे उम्मीद है ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, विस्तार होता रहेगा इस उपवन का, क्योंकि उपवन के साथ साथ में एक शहीद स्मारक भी है, जिस शहीद स्मारक को ये करीब 6 एकड़ की जमीन, कोई ऐसे नहीं करता है, 6 एकड़ की जमीन सिर्फ शहीद स्मारक और कारगिल शहीद उपवन के लिए दी गई है
0: जी।
1: और उस शहीद स्मारक पे आपके प्री इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल आर्मी की के योद्धाओं का नाम, शहीदों का नाम, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी के जितने वॉर्स हुए, जितने युद्ध हुए और आज भी जो चल रहे हैं, सीआई ऑप्स टोटली अपडेटेड पूरी लिस्ट
0: जी,
1: वो वहाँ पर छपी हुई है शहीदों की। और ये एक तरह से सुभारती यूनिवर्सिटी की सोच है, संस्थापक जी की सोच है
0: जी,
1: कि ये सब हो रहा है यहाँ पर और ये आपको अद्वितीय है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग अब कॉपी कर सकते हैं, ऐसा जिनकी सोच होगी इस तरह की, लोग कॉपी कर सकते हैं, पर ये पहली, सबसे पहली चीज, ये पहली यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा हूँ और इतना ऑनर और सम्मान करते हैं हम सैनिकों का, तो उससे दिल बहुत खुश और गदगद होता है।
0: सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और बाकी जो हमारे फाउंडर सर हैं, उनकी जो सोच है वो बाकी लोगों से काफी हटकर है,

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर चल रही है खास मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजेश त्यागी जी। आज हम बातें कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस पर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो आरजे वंशी के साथ। सर, आपने ये भी देखा होगा कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम जय हिंद का उपयोग करते हैं। इसकी हालांकि कॉपीज की गई हैं, बहुत जगह इसको अब मनाने लगे हैं, लेकिन ये मैं कहूंगी इनिशिएटिव तो सुभारती का ही रहा कि जब हम किसी से मिलते हैं तो जय हिंद हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेना की बात करें तो वहाँ तो ये होता ही है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में होना एक बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। दरअसल 2021 31 जुलाई को मैं रिटायर हुआ
0: जी,
1: और उससे पहले 26 जुलाई को 5 दिन पहले मैं यहाँ आया था
0: जी,
1: कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए ही, जब कारगिल शहीद उपवन का इनॉग्रेशन हुआ था
0: जी,
1: उस दिन स्थापना हुई थी इसकी
0: जी।
1: और मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ कि उस दिन मैं यहाँ पर था
0: जी,
1: और एक स्पेशल गेस्ट की तरह मैं आया था यहाँ पर, और उसके बाद एक शुभार्थी ही बन गया
0: जी।
1: 5 दिन बाद मैं शुभार्थी ही बन गया, और मेरी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं आया। मेरे जो रूटीन मेरा चल रहा था सेना में
0: जी,
1: बिल्कुल वही रूटीन मेरा यहाँ भी चल रहा है। सुबह उठ के पीटी में जाना
0: जी,
1: और जहाँ से चल दिए वहाँ से जय हिंद का आवाज सुनना
0: जी,
1: और जय हिंद खुद करना और सबको जय हिंद करके। और यहाँ एक और चीज है जो सेना से थोड़ी सी अलग है, यहाँ चाहे कोई सीनियर हो या कोई जूनियर हो, जो कोई वेट नहीं करता है, सीनियर वेट नहीं करता कि मुझे जूनियर जय हिंद बोलेगा तब मैं जवाब दूंगा। ये एक छोटा सा फर्क हुआ है
0: जी।
1: आज मैं एक किसी गार्ड को भी देखता हूँ तो मैं पहले जय हिंद कर देता हूँ, क्योंकि वो अंदर से आता है जय हिंद। जय हिंद यहाँ पे अंदर से आता
0: जी,
1: है
0: यहाँ ना भावना, वो हमारे अंदर
1: भावना है
0: जी।
1: वहाँ एक ऑर्डर है
0: जी,
1: सेना में एक ऑर्डर है, भावना तो है ही
0: जी,
1: एक ऑर्डर है कि आपको जय हिंद कहना है वरना सजा मिलेगी
0: जी।
1: जय हिंद नहीं करेंगे तो आप सजा के पात्र हो जाएंगे
0: जी,
1: लेकिन यहाँ पर अपने दिल से भावनाओं से आप जय हिंद करते हैं, और ये बहुत एक छोटा सा जो मैं बता रहा हूँ फर्क, बाकी सब बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे सेना में चल रही थी।
0: तो ये बहुत अच्छी बात बताई। तो इस हिसाब से तो सर हम शुभार्थियन है और हमें प्राउड है इस बात का,
1: चल रही थी
0: तो ये बहुत अच्छी बात बताई। तो इस हिसाब से तो सर हम शुभार्थियन है और हमें प्राउड है इस बात का,
1: बिल्कुल। हमें इंसान को कभी घमंडी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का हमें घमंड है
0: बिल्कुल सर। सर आप बहुत अच्छे मौके पर आए, बहुत अच्छी बातें आपने हमसे साझा की, और हम कहेंगे कि आप समय समय पर हमसे बात करने के लिए आया करें, हमें खुशी होती है, अच्छी एक ऊर्जा हमें प्रवाहित होती है। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर, आपको भी।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है।
5: सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम है आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: आरजीवंशी में स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजीवंशी और लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉक शो। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम मेरे यानी आरजीवंशी के साथ। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या बात कही है कि सबको चमक दिखाई देती है, मगर वो दिया किस मिट्टी का बना है इसके बारे में लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। तो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ पर कोई सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है, हम अक्सर अपनी जड़ों को, अपने उन मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने माया नगरी की चकाचौंध को देखा भी है, जिया भी है, लेकिन अपनी सादगी और संस्कारों को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के बेहद टैलेंटेड, जमीन से जुड़े और हमारे अपने ऋषि भूटानी जी आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे तो वार्तालाप हमारी पहले भी हो चुकी है, तो देखते हैं कैसा जाता है ये वाला भी।
1: तो ऋषि जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ग्लैमर की इस दुनिया में हर रोज रेगुलर बेसिस पर चमक धमक और चकाचौंध से आपका सामना होता है, ऐसे माहौल में वो कौन सी सीख या मैं कहूँ पारिवारिक मूल्य है जो आपके पैरों को हमेशा जमीन पर टिकाए रखने के लिए कायम है?
2: मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि आपको एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए
1: जी।
2: और जब फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं तो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। कि जब आपको कहते हैं कि ट्राई करो, वो ये नहीं कह रहे कि जीत के आओ, वो कह रहे हैं ट्राई करो। तो जब आप ट्राई करते हैं तो उसमें जीतने की उम्मीद भी छुपी होती है। तो आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप हमेशा चाहेंगे कि उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। बाजार में उनको जो है गलत तरीके से आपको लेके बोला ना जाए, आपकी चीजें जो आप कर रहे हैं उसको लेके जो है अच्छी बातें ही मार्केट में आए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती है, मगर कुछ नजरअंदाज हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो आप अपनी फैमिलीज की जो मॉरल वैल्यूज है आप उसका इजाफा करें, उसको आप आगे लेके जाएं बनिस्पत की आप उसके बेइज्जती कराएं। और जल्दबाजी ना दिखाएं क्योंकि कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं मिलती है। हर चीज टाइम लेती है और काफी अच्छा टाइम लेती है। और जितना बड़ा सपना उतना ज्यादा टाइम, और पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। और ये सब बचपन से ही आपके अंदर आना शुरू होता है। आप जब हम बड़े होते हैं हमें पता नहीं होता कि हम ऐसे क्यों बन गए। तो एक टाइम तक तो आप सिर्फ लर्निंग चल रही होती है, वो स्कूल की लर्निंग है, घर की लर्निंग है, मगर आपका वो क्यूमुलेटिव होके आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और फिर आप उसी तरीके से आपकी सोच बनती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इसी तरीके से बड़ा बना और इसी तरीके से मैं आगे गया और अपनी जो है मैंने लाइफ लीड करनी शुरू करी।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

आ देखो आपस में जंग, हाँ हाँ आपस में जंग, हाँ हाँ आपस में जंग। जय घुमा के, अरे समंदर में जैसे है

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: ऋषि जी, अभी आपने एक बात कही कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी से अगर हमें कुछ मिल जाता है, हालांकि मिलता नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि जो चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है।
2: ऐसा नहीं है, आपके लक के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है कि आप उसकी, कई बार आपकी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही होती है मगर आप उसको रियलाइज नहीं करते हैं
1: जी,
2: तो आप फिर जब उस चीज को कर देते हैं तो लगता है कि यार ये तो एकदम हो गई। तो जल्दबाजी जो है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग मुंबई पहुंचे और उन्हें फर्स्ट सीरियल या फर्स्ट सेट पता लगा 2-4-5 दिन कह लो या महीना कह लो, उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। और ये भी हो सकता है कि वो सेकंड काम जो है उसको टाइम लग गया होने में। तो जल्दबाजी तो ये है कि आप पहले तो ये डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है।
1: बिल्कुल,
2: जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहते हैं आजकल जो है कि सब कुछ अभी चाहिए अभी चाहिए अभी, वो अभी होता नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से उस हर चीज टाइम लेगी अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू और डिमांड एंड सप्लाई। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है तो क्या है कि अब डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है कि एक एक ऑडिशन में वहां 10-10,000 लोग आ रहे हैं। तो अगर इतने लोग आएंगे तो ऑब्वियस है कि आप उसमें बुरे नहीं है मगर उसमें एक लक फैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो 5 लोगों में आपका बार बार सिलेक्शन हो रहा है मगर आपका नंबर नहीं लग रहा है।
1: बिल्कुल,
2: इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे एक्टर हो गए। बस ये है कि अभी वो टाइम नहीं आया आपका। तो जल्दबाजी ना करें, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते रहे, हर मिनट उसी के बारे में सोचें। ये नहीं कि अब अच्छा ये नहीं हुआ तो चलो अब दूसरी चीज कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: फिर वो दूसरी की तीसरी भी होगी और चौथी भी होगी, पांचवी भी होगी।
1: मतलब आपका कहने का ये है कि जो अनसर्टेनिटी है आजकल के इस जनरेशन में, उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है।
2: बिल्कुल, और अपने इर्द गिर्द जो फैमिली है या दोस्त हैं जिनको आप एक्चुअल में दोस्त मानते हैं, उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। इवन टीचर्स से पूछिए मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर आप सबसे क्यूमुलेटिव एक राय लोगे तो मुझे लगता है कि वो भी आपको बताएंगे कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आप अपना ऑप्शन उनके सामने रख दो। तो बड़ा डिस्कशन करने से बहुत फायदे होते हैं आप जब फैमिली के साथ बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने बात करनी बंद कर दी है, सब अपने फोन पे लगते हैं। आप घर पहुंचो तो पता चलता है कि सबके पास मोबाइल है, बात कोई नहीं कर रहा है। तो आप एक कॉन्वर्सेशन करिए, एक प्लेस बनाइए। मैं तो कहूंगा कि एक लैंडिंग प्लेस होनी चाहिए मोबाइल के लिए, कि जैसे आप घर पहुंचे एक जगह बस रख दो जैसे बाकी चीजें पड़ी होती हैं, और फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू करिए। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इवन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उनके साथ बैठो, वो उनका जो जीवन का सार है वो तो देना चाहते हैं आपको, बल्कि तो उस पे ध्यान दें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरीके से आज की इस भागदौड़ वाली जो जिंदगी है इसमें आपके परिवार की अहमियत और उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता है और ये पता चलता है कि हमें कैसी स्थिति में कौन सा स्टेप उठाना चाहिए।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक

0: नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, ऐसा कहा जाता है कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। जब आपको पहली बार सफलता मिली थी, या मैं कहूँ आपको रिकॉग्निशन मिला था, तो आपके माता पिता या जो आपके एल्डर वंस रहे, उन्होंने आपको क्या नसीहत दी जो आज तलक भी आपके साथ है और जब भी आप काम करते हैं वो आपके जहन में जरूर आती है?
2: कुछ भी पर्टिकुलर नहीं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, जब भी मैं कोई चीज करने जाता हूँ मैं स्क्रिप्ट भी बताता हूँ फैमिली को कि अच्छा ऐसी स्क्रिप्ट है, इस तरह का रोल है। तो जब भी फिल्म, अभी तक सुपरहिट तो कोई भी मेरी फिल्म नहीं हुई है, जो क्योंकि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, मतलब अपने आपको, आपका भी फिर इसका मतलब आपने आपको धोखे में रख रहे हैं। तो जो भी सेमी हिट है उस टाइम पे कि हाँ अब जो भी फिल्म करनी है वो इससे बेटर होनी चाहिए, और जल्दबाजी जो आपने वर्ड यूज किया था वो नहीं होनी चाहिए कि पता लगा इस चक्कर में अब आप बुरी फिल्में करने लग गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो फेजेस आएंगे, आप गलतियां करते हैं तभी आप सीखते भी हैं। इवन आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, आप देखोगे कि उन्होंने मल्टीपल मिस्टेक्स करी है।
1: यस।
2: और जो मिस्टेक ही नहीं कर रहा तो वो तो क्या ही जीतेगा उसकी, तो
1: क्या ही सीखेगा,
2: क्या सीखेगा, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है
1: जी।
2: तो आप हमेशा देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने गलतियां बहुत ज्यादा करी होती हैं।
1: हाँ जी।
2: तो आप अपनी गलतियों से सीखो, अच्छी अच्छी, मैं तो फिल्मों की ही बात करूंगा
1: जी।
2: तो आप और अच्छी फिल्में जो भी स्क्रिप्ट

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, एक अभिनेता के तौर पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो काम आप पर्दे पर करते हैं, जो रोल आप पर्दे पर निभाते हैं, उसकी समाज के प्रति कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे रोल को मना किया है जो आपको लगा आप अपने अंतर मन से कि मुझे नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन मेरा जाने वाला है?
2: मेरा बड़ा ही पर्सनल मानना है कि जितनी फिल्में आती हैं वो समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा होती हैं, उसको हम पर्दे पे लाते हैं। कुछ इमेजिनरी फिल्म होती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी फिल्म देखेंगे तो उसमें आप फ्लाइंग कार्स भी देखोगे जो अब आ चुकी हैं, है ना। ऐसी आपने बहुत सारी मशीन गन्स देखी होंगी, टैंक्स देखे होंगे जो फिल्मों में लगे कि यार ये तो कभी होगा ही नहीं। तो इवन कार्स, जेम्स बॉन्ड की अगर आप कार्स की बात करो, तो उस टाइम पे लगता है वाह यार ऐसी गाड़ियां कब आएंगी, वो रोड पे हैं। तो फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें, और इवन हम अगर बात करें समाज से रिलेटेड फिल्म्स की, वो हमारे है तो आए नहीं, हमारे इर्द गिर्द वो सब चीजें चल रही हैं और वो ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप फिल्में कमर्शियल होनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: बहुत लोग कहते हैं रियलिस्टिक फिल्म्स, मेरे को तो सिनेमा हो सकता है कि इसलिए बॉलीवुड थोड़ा पीछे भी हो रहा है। क्योंकि हम रियलिस्टिक की तरफ चले गए, लोग ऑलरेडी रियलिस्टिक हैं।
1: यस।
2: तो लोग अब

0: लार्जर देन लाइफ चीजें देखना चाहते हैं।
1: यस,
0: जो इर्द गिर्द हो रहा है वो तो खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: कॉमन हो चुका है।
0: और मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल है। वो नेक्स्ट लेवल का साउंड देखना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे जो बड़ी बड़ी चीजें आप दिखाना चाहते हैं, अलग विजुअल्स क्रिएट करना चाहते हैं बड़े, तो उसके लिए ऑडियंस जाना चाहती है कि यार ऑलरेडी इतना मेंटल प्रेशर है तो मैं वो रिलीज कर सकूं। तो फिल्म में तो हाईली एंटरटेनिंग होनी चाहिए, धमाल कमर्शियल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिक सिनेमा कुछ, हर चीज मोबाइल में है आज की डेट में। मतलब अब आपको ना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे, पहले एक ऐसा टाइम था कि एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: या हम बात कर लें कि दूरदर्शन होता था, वहीं से लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं। मगर अब इतना वास्ट पूरा वर्ल्ड आपके पास खुल चुका है, इवन ओटीटी आ चुका है। अब हमारा कंपैरिजन बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं रहा है, ना इंडियन फिल्म से रहा है, अब हॉलीवुड फिल्म है, कोरियन फिल्म है, जैपनीज फिल्म है। अब सबका कॉम्पिटिशन है हर फिल्म के साथ। अब आप एनिमेशन किस लेवल का क्रिएट कर रहे हैं, अब जिसने एवेटार देख ली, अब आप उससे कम का अगर आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट करोगे तो यार एवेटार को कहोगे कि यार हम तो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हर चीज अब कंपैरिजन में है। आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, अमेज़न खोलेंगे, हर चीज उस पे, तो अब कंपैरिजन नेक्स्ट लेवल है। बस ये है कि आपके जो हमारा कल्चर है, जिसकी हमने पहले भी बात करी, हम अपने कल्चर को ना छोड़ें। अब हो क्या चुका है कि हम, हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है हम, वो इंग्लिश में ही होती है वहाँ।
1: यस यस,
0: बस डायलॉग जो है वो हिंदी में बोले जाते हैं।
1: हाँ।
0: बाकी सोच टोटल जो है इंग्लिश में चेंज हो चुकी है। तो अब क्या हुआ, सिनेमा भी अब हम हॉलीवुड बना रहे हैं, हमने बॉलीवुड नहीं बनाना बंद कर दिया। अब जब लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या है।
1: yes, yes.
0: क्योंकि आपने अपने रूट्स को छोड़ दिया, आपने अपने जो है पतन कर दिया हर चीज का। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड, अपने इंडियन कल्चर को लेके आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तभी लोग जुड़ेंगे उस फिल्म के साथ, तभी उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रूट्स को पकड़े रहना बड़ा जरूरी है और सफलता तो फिर आपके कदम जरूर चूमेगी।
2: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: ऋषि जी, बहुत सारी बातें आज हम आपसे कर रहे हैं। क्योंकि आजकल सिनेमा और वेब सीरीज में सफलता का जो स्केल है, मेजरिंग स्केल, अक्सर पैसों या व्यूज से नापा जाने लगा है, तो आपके हिसाब से एक कलाकार के तौर पर सच्ची सफलता क्या कहती है?
2: मैंने आपसे कमर्शियल फिल्म की बात करी थी, मैंने बोला कि मेरे को तो पूरी मनोरंजन वाली फिल्म, पूरी कमर्शियल फिल्म, आदमी आए बिंदास देखे, मजे करें और चले जाएं।
1: हाँ।
2: तो वो सफलता जो है वो पैसों से ही आएगी।
1: यस।
2: क्योंकि प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाते हैं, और कल उन्हीं को ही अगर सपोज करो बहुत अच्छी फिल्म बन गई मगर किसी ने देखी नहीं,
1: यस यस,
2: तो ऐसी जंगल में मोर नाचा है उसका कोई मतलब नहीं।
1: हाँ।
2: है। तो एंड ऑफ द डे हर चीज जो है पैसे से रिलेटेड है। अगर हमारे प्रोड्यूसर खुश है तो हम खुश है। प्रोड्यूसर ने अगर एक रुपए लगाया तो उसे दो रुपए मिल गए तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगली बार वो दो रुपए की फिल्म बनाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो कहीं ना कहीं आपको कमर्शियल एस्पेक्ट फिल्म की क्रिएटिविटी से जोड़ना ही पड़ेगा। आप अगर कुछ ऐसी फिल्म सोच रहे हैं आपको जो लगता है कि ऑडियंस नहीं मिलेगी सिनेमा हॉल के लिए, उसे आप यूट्यूब के लिए बनाइए, आप उसे ओटीटी किसी प्लेटफॉर्म के लिए बनाइए। क्योंकि एक क्रिएटिविटी की अगर खुजली है तो वो मिटाने के लिए फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स है।
1: yes.
2: उसको आप सिनेमा हॉल के लिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां से पैसा निकलने वाला नहीं है।
1: हाँ।
2: तो कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा रहेगा और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर इतना पैसा इसलिए लगा रहा है कि उसको प्रॉफिट हो।
1: प्रॉफिट हो, यस।
2: वो ऑब्वियस है कि वो क्रिएटिव है, इस वजह से ही वो इस फील्ड में भी आ रहा है। मगर पैसा नहीं बनेगा तो वो नेक्स्ट टाइम फिल्म नहीं बनाएगा। नेक्स्ट टाइम फिल्म नहीं बनाएगा तो हमें काम नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो आपको जो हम उसको हम अगर हम मैच करना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी और पैसे को, क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं पैसा जुड़ा हुआ है उससे।
1: बहुत सही बात आपने कही कि पैसे के बिना तो वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
2: हाँ।
1: वही बात हो जाती है, क्योंकि सर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती, आपके फेवर में नहीं होती है, तो उस टाइम पर, उस फेज में अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप सेल्फ पेशेंस रखना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो ताकत है वो आपको कहाँ से मिलती रही है, या जो हमारे आज की जनरेशन है जो इस दौर से जूझ रहे हैं वो कैसे इन सब चीजों से डील करें?
2: अगर इशू है तो उसका सॉल्यूशन हो गई होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो आप अपने क्राफ्ट पे वर्क करना शुरू करिए। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर एक इमोशन पे वर्क कर रहे हो और वो अब इमोशन नहीं चल रहा है।
1: यस यस।
2: हो सकता है कि आपका एंगर बहुत अच्छा हो मगर आप रोमांटिक फिल्म्स की तरफ जा रहे हैं मगर वो नहीं आ पा रहा है।
1: yes, yes.
2: तो आप अपने क्राफ्ट के ऊपर तो काम करते रहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप और एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करिए। और आपको अब तो ऑनलाइन आपको 36 स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, आप उनको रिकॉर्ड करिए, अपने सबको दिखाओ, उनसे पूछो कि आप बताओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला इमोशन स्ट्रांग है। तो जल्दबाजी से तो कुछ होगा नहीं, आपको अपना टाइम पूरा देना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग भी समझेंगे कि यार ये इतना पैशनेटली लगा हुआ है, ये हर तरह के सीन करना चाहता है हर, तो कहीं ना कहीं किसी को याद रह जाएगा कुछ। इवन थिएटर सबसे अच्छा जरिया है। और अब तो काफी सारे रामनगर में, मुंबई में काफी सारे जो है थिएटर छोटे छोटे बन गए हैं। तो आप अगर कुछ प्ले तैयार करते हैं तो आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को वहां बुलाइए, उनको अपना प्ले दिखाओ।
1: Yes.
2: प्ले हमेशा याद रह जाता है, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम कास्टिंग कर रहे होंगे तो आपको बुला लेंगे कि यार मैंने उसका प्ले देखा था, वो कमाल था। तो इस तरह से भी आप होमवर्क कर सकते हो। और जो नए लोग जा रहे हैं उनके लिए ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपना खुद का रास्ता ढूंढे, किसी की मिमिक्री ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी
1: है
2: तो वो आपको क्यों देखें। तो आप अपना यूनिक टैलेंट उसमें से खोजिए और अपने ऊपर होमवर्क करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि अभी आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप असिस्ट भी कर सकते हैं।
1: यस।
2: आप कोशिश करिए आप सेट पे रहे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आप किसी को, मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्शन में लग जाओ, डायरेक्शन में लग जाओ, जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि दिन लंबा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आपके पास अगर ऑडिशंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो वो रास्ता खोजो जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑडिशंस का टाइम हो। अगर आप पैसा नहीं इतना बना पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही जरिए ढूंढें। तो आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा कि हाँ, हो सकता है उस प्रोडक्शन में आपको कभी कहते यार अच्छा वो नहीं आया, तू एक्ट कर, तू दिखा, या तू आप खुद बोल सकते हो कि यार इस रोल में तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो आप अपने आप को प्रूव कर दो।
1: बिल्कुल,
2: तो रास्ते बहुत है करने के, जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसे करना है वो कुछ करेगा।
1: सही कहा बिल्कुल आपने सर।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: इंडस्ट्री में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, फिर चाहे आपका रोल मैटर नहीं करता कि आपको एज एन एक्टर काम करना पड़ रहा है या आप सेट पर पीछे असिस्ट भी कर सकते हैं किसी को, तो कंसिस्टेंसी कैसे भी हो बट मेंटेन करके रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या पुराने लोगों की भी बात करूं, कॉम्प्रोमाइजेस की बात आ जाती है ना, समझौतों की बात आ जाती है। तो शॉर्टकट के इस दौर में आप किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं या जो भी आपके सिद्धांत हैं उन पर कैसे आप टिके रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग है आज के टाइम में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मोस्टली कॉम्प्रोमाइज जब भी आएगा आप देखना वहाँ क्राफ्ट मिसिंग होगा।
1: यस,
2: आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा। आप देखना जिसको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात आती नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कॉम्प्रोमाइज चाह रहा हूँ, मगर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया मेरी फिल्म के लिए तो मैं अटक जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे यही एक्टर चाहिए।
1: yes.
2: तो पहले तो आप अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे जो है एक मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है ये कोई नहीं भूलने वाला है। तो आप पहले तो अपने क्राफ्ट पे होमवर्क कर लो। अगर आपका क्राफ्ट ही अगर वीक है तो फिर तो कॉम्प्रोमाइजेस वाली बात लेफ्ट राइट सेंटर से आनी आनी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो आप शॉर्टकट मत ढूंढो, इसमें टाइम लगेगा, आप टाइम दो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS करने के लिए आपको 5 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप जो है जर्नल फिजिशियन बनते हो, उसके बाद एक्सपर्टीज है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो जब आप वहाँ 5-7-8 साल देते हो तो आपको एक्टिंग फील्ड में भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आज लैंड कर गए तो आपको आज ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ भी करना है, मार्केटिंग करनी है तो आप MBA मार्केटिंग करते हो तो पता चलता है आपने 5 साल दे दिए वहाँ भी।
1: बिल्कुल।
2: जब हर जगह आप देने को तैयार हो टाइम तो यहाँ क्यों नहीं देने को, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई फुल एंड फाइनल कोई पेपर्स पे कुछ नहीं होता है।
1: यस यस।
2: क्योंकि ये इनविजिबल क्राफ्ट है, उसकी पॉलिशिंग तो हो सकती है, आप कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके आप पॉलिशिंग कर सकते हो, मगर आप चाहो कि उसको मैं राइटिंग में ले आऊं, राइटिंग में एक्टिंग होती नहीं है। एक्ट का मतलब ही है टू डू।
1: यस।
2: मतलब करने की विद्या है।
1: yes,
2: मतलब yes. पढ़ने की विद्या ऑब्वियस है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ते हो, आप देखते हो, आप सुनते हो, तो एक आप इमेज बना लेते हो कि हाँ ये इस तरह का कैरेक्टर इस तरह से वर्क करेगा। मगर आपको करना तो पड़ेगा ही, एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आपको ही आना है।
1: आपको ही आना है। yes.
2: मैं कह रहा हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज करके आ भी गया मगर कैमरे के सामने क्या करोगे? कैमरे के सामने तो आप ही को एक्ट करना है,
1: आप ही को एक्ट करना है।
2: मेरा तो बिलीफ सिस्टम इसमें वर्क करता नहीं है। मेरे को लगता है कि आप अपने चीजों को लेके होमवर्क करते रहो, नहीं तो फिर हर फिल्म में ही कॉम्प्रोमाइज होगा।
1: यस।
2: और आप कभी कहीं जा भी नहीं पाओगे।
1: जा भी नहीं पाओगे।
2: ऐसा भी नहीं होगा कि कोई रास्ता मिल गया।
1: हाँ।
2: मेरा एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, चार फिल्म, फिर लोग फिर नमस्ते कर देंगे, फिर आप घर जाओ।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। Stay tuned.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि सर आपका जो फेवरेट जेनर है टू एक्ट वो क्या है?
2: अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे को ना पहले तो स्क्रिप्ट की कैस होनी चाहिए, मतलब मेरे को किक मारनी चाहिए यार।
1: हाँ।
2: कि अमेजिंग है।
1: yes.
2: हार्ड वर्क से मैं डरता नहीं।
1: बिल्कुल।
2: मुझे लगता है कि हार्ड वर्क तो मैं लिखवा के लाया हूँ कि मुझे कोई भी चीज इजीली मिलेगी नहीं। ये कहीं ना कहीं रिटर्न में मैंने अपने माइंड में लिख लिया है कि यार कोई भी चीज मुझे इजीली मिलने वाली नहीं है। तो मैं हार्ड वर्क के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। आपने अगर मेरी एन नंबर ऑफ फिल्म्स देखी होगी तो उसमें काफी सारे वेरिएशंस हैं अलग अलग। किसी में कुछ है, इवन मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी वो बड़ी अनयूजुअल फिल्म थी।
1: अच्छा।
2: बोलो राम जो थी उसमें एक लड़की के ऊपर उसकी माँ के कत्ल का इल्जाम है। नॉर्मली कोई भी ऐसे अपना डेब्यू करता नहीं है। हर आदमी जो डेब्यू करता है या तो रोमांटिक फिल्म से करेगा। आज भी ऐसे हो रहा है। तो हर आदमी सेफ खेलता है। मैंने बहुत ही अनसेफ चीज से अपना डेब्यू करा। तो मेरे को मजा आता है एक्सपेरिमेंटल चीजें करने में, मगर उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा मैं देखता हूँ उसको हमेशा से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा ये कि जब तक आप नंबर ऑफ यू नो वैरायटीज फेस नहीं करेंगे तो शायद आप अपने आप को उतने अच्छे से पॉलिश अप भी नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर बेस्ट है या कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है सर। क्योंकि एक जब आम इंसान की बात करें, जब वो असफल हो जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अकेले में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रो सकता है या कुछ भी कर सकता है। बट बीइंग अ पब्लिक फिगर एज यू आर, आपकी असफलताओं पर सभी की नजरें रहती होंगी, तो आप ऐसी कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से टैकल करते हैं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके चलते हैं या आपका जो आत्मसम्मान है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं?
2: जर्नी मेरे को लगता है कि जो मेरे को डेस्टिनेशन मेरी चेंज हो गई
1: जी।
2: मैंने मेरे को कुछ चीज अचीव करनी थी, वो मैंने अचीव कर लिया, तो मेरे को लगा कि अब आगे की एक और जो है डेस्टिनेशन हो गई। मगर मुझे लगता है कि जर्नी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जो रास्ता है ना वो सुंदर होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो बाकी तो चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, सक्सेस मिलेगी कभी फेलियर भी मिलेगा। मगर आप अपना जीना नहीं छोड़ सकते हो।
1: बिल्कुल।
2: तो और अपने ऊपर होमवर्क करते रहो। वैसे से कई लोग मुझे कहते हैं यार तू बॉडी बिल्डिंग में है।
1: हाँ।
2: तो मैं बोलता हूँ मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। तो मेरे को अगर मेंटल बैलेंस की बात करूँ, मेरे को जिम बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी देता है।
1: ओके।
2: हाँ, और पढ़ने का मुझे बहुत शौक है तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुनता बहुत सारी रिलीजियस चीजों को मैं सुनता हूँ, और मेरी फैमिली में है भी, मतलब पाठ पूजा बहुत ज्यादा है। तो उससे हमेशा एक कहीं ना कहीं लगता है कि एक फोर्स है जो प्रोटेक्ट कर रही है।
1: yes.
2: और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे सिक्स सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचरिस्टिक है, बहुत सारी चीजें जो मुझे नजर आती हैं। तो मेरे को बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है कि हनुमान जी जो है पीछे खड़े हुए हैं।
1: जो होना भी चाहिए। बिलीफ सपोर्ट रहता है तो आप
2: लाइफ इजी है।
1: यस, लाइफ इजी है इन शॉर्ट, यही कहेंगे।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम है आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, जो आजकल के टाइम को देखें, सिनेरियो को देखें, तो आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू के जो लोग होंगे वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, है ना। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ही करते कुछ रहना, मतलब आपके लिए इंसानियत की बात करें या बात करें दूसरों की हेल्प के लिए, इसके क्या मायने हैं? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है पुराना जो आपकी सोच को बदल दिया जिसने?
2: मुझे लगता है ये ना कोर प्रॉब्लम में आ गया अब।
1: Yes.
2: क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, सिंगल चाइल्ड होता जा रहा है।
1: Yes.
2: तो वहां पर क्या, पहले क्या होता था, पहले सब फैमिलीज इकट्ठी रहती थी, इतने सारे बच्चे होते थे, सब आपस में बातें करते थे। अब क्या, सिंगल है तो उसे लगता है कि सब मेरा ही है।
1: Yes.
2: तो इसलिए वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अब ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है।
1: हाँ.
2: मतलब फैमिली जो है एक ही बच्चे को देख रहे हैं।
1: Yes.
2: अब ज्वाइंट फैमिलीज का कल्चर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब क्या है, वो प्यार खत्म हो जा रहा है, वो आपस में सामान को बांटना, केयरिंग शेयरिंग, वो सब टोटल अब उस तरफ जा रहा है कि यहाँ एक तो आप मेट्रो पहुंच गए तो वैसे ही पड़ोसी से नहीं है आपकी। ऊपर
1: हाँ।
2: से अगर एक बच्चा है उसे लगता है कि मैं ही मैं हूँ।
1: Yes.
2: तो वो एडजस्टमेंट जो है सोसाइटी में, एक टाइम के बाद आप जैसे ट्वेल्थ करते हैं या अपना कॉलेज करते हैं तो फिर आप अपने आप को देखते हैं यार मैं अकेला रह गया। तो वो फिर क्या होता है, वो अपने आप में ही एक घुटन कह लो उसको।
1: Yes.
2: या अपने सेल्फ सेंटर्ड, उसको वर्ड देना सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा हो सकता है कि वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाए।
1: Yes, yes.
2: मगर वो मेरे को लगता है वो घुटन ज्यादा है क्योंकि अब किसी से आप शेयर कर नहीं सकते हैं, आप किसी पे बिलीव रखते नहीं है।
1: Yes.
2: आसपास के लोग जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो शेयरिंग केयरिंग में जो मजा है, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से हैं।
1: Yes.
2: तो जो मजा साथ रहने में है वो अलग अलग रह के कुछ होता नहीं है। मतलब
1: होता नहीं
2: होगा, लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता।
1: बहुत सही आपने कहा कि क्योंकि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे जो है रेयर होते जा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
1: जो कि बड़ा ही जरूरी है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसकी मॉरल वैल्यूज को अपडेट करने में और इनकल्केशन में। तो मुझे भी यही लगता है कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और वो आपको समाज में किस तरीके से रहना है, जो सामाजिक वैल्यूज होते हैं असल में, वो हमें वहीं से सीखने को मिलते हैं, जो आजकल के बच्चों में शायद धीरे धीरे थोड़े कम होते चले जा रहे हैं।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: ऋषि जी, अभी ना मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहूंगी, इफ यू परमिट। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको ना इन शब्दों का एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना होगा, एंड यू हैव टू चूज वन। ओके, तो फर्स्ट वन इज पैसा या सुकून?
2: सुकून।
1: ओके,
2: वो पैसे से सुकून आता है।
1: नाइस वन। शोहरत या सम्मान?
2: आप मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं।
1: इसी को तो बोलते हैं रैपिड फायर। हाँ, तो
2: सम्मान तब मिलता है जब शोहरत होती है।
1: यस। तो बड़ा बनना या अच्छा बनना?
2: अच्छा बनना।
1: कैसे?
2: किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो, अपने अपने लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। आप अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल।
1: यस।
2: तो अगर हम सोशल नहीं है तो हम एनिमल है।
1: एनिमल है, yes,
2: तो आप जानवर बन जाओ यार।
1: बहुत सही कहा आपने। अभी मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको मतलब बताना होगा व्हाट इट मींस टू यू। सफलता।
2: सब कुछ।
1: सब कुछ। ओके,
2: आपको पता होगा कि हर चीज एक टाइम के दौरान होती है। 10 साल पहले कुछ और इसका आंसर हो सकता था, मतलब आज की डेट में सब कुछ।
1: ओके, माफी।
2: वो करते चलो। उसमें खुद का सुकून छुपा हुआ है।
1: बिल्कुल। अहंकार।
2: बिल्कुल, हर चीज खत्म कर देता है।
1: फैमिली।
2: सपोर्ट सिस्टम।
1: बॉलीवुड।
2: कर्मभूमि।
1: मेरठ।
2: मातृभूमि।
1: नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सवाल आई मीन बहुत इंस्टेंट और आपके जवाब काफी सेटिस्फेक्टरी। आजकल के जो युवा हैं, हालांकि हम इस पर बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, बट मैं चाहूंगी कि कॉन्क्लूडिंग पार्ट में भी ये थोड़ा सा हमारे साथ रहे कंटेंट, कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो युवा जन हैं, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी है, जिन्हें शॉर्टकट चाहिए, उनके लिए एक फाइनल संदेश आप क्या देना चाहेंगे?
2: जिनको जल्दी है वो जल्दी जल्दी निकल गए और उन्हें किसी ने पूछा नहीं। तो काम करो अपना, और जो भी राह आपको चुननी है वो बिना फैमिली सपोर्ट के या बिना इर्द गिर्द के लोग, एक तो ये इट्स माई लाइफ वाला जो एंगल है वो मेरी समझ से बाहर है। आपकी लाइफ है मगर वो जुड़ी हुई है पूरी एक फैमिली चेन से। इवन उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो आप जो है उन सबसे एक राय लें और आपकी अपनी क्या चॉइस है उनका डिस्कस करें, और एक बार जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे यही बनना है तो फिर आप उसमें लग जाओ। अगर आप उसमें डगमगाते रहे तो फिर जिंदगी भर जो है आप रगड़ते रहोगे और कुछ नहीं होगा,
1: कुछ हासिल नहीं होगा।
2: और मेरा ये मानना है कि अगर 5 साल आपने मेहनत कर ली तो आगे के 50 साल बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने 5 साल मस्ती कर ली तो फिर वो 50 साल बड़े मुश्किल है।
1: इन्वेस्टमेंट बड़ा जरूरी है टाइम का। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जिस तरह का सब्जेक्ट था हमारा, तो मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में अक्सर एक्सीडेंट होते हैं।
1: हाँ, तो और वो किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी
2: उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। और मेंटल पीस ढूंढे आज की दुनिया में जब, और फिजूल का स्ट्रेस ना लें।
1: यस।
2: और आप जिन्हें प्यार करते हैं और अगर कोई चीज से आपको बुरा लगा, या हो सकता है उसके पास अपनी रीजनिंग हो, वो क्लियर कर लें हाथों हाथ।
1: बिल्कुल।
2: तो आपको पता चलेगा कि आपने ऐसी इतना बड़ा भार लेके बैठे थे, उसके पास एक बात थी जो उसे आपकी अच्छी नहीं लगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और अगर वो बात वो कह देगा तो उसको भी हल्का फील होगा और आपको भी लगेगा अरे ये बात थी, ले सॉरी। तो दबाव ना रखें इतना ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रेस लेने के लिए।
1: हाँ।
2: इसको थोड़ा सा हल्का बनाएं।
1: बिल्कुल। हालांकि ये बहुत कम होता है, क्योंकि आपने बहुत बार इस चीज का जिक्र किया टॉक शो के दौरान कि आपकी फैमिली की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी फैमिली से क्या कहना चाहेंगे हमारी रेडियो के माध्यम से?
2: कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जब फैमिली की बात आती है तो मैं ईगो वर्ड तो मैं यूज ही नहीं करना चाहता, मैं उसे रखता ही नहीं हूँ
1: जी।
2: और बहुत सारी चीजें नजरअंदाज भी करनी पड़ती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो सब पूरी फैमिली करे उस चीज को नजरअंदाज।
1: yes.
2: और प्यार बना रहे क्योंकि एक दिन सब नहीं चला जाना है।
1: yes.
2: सब चीज यहीं रह जाएगी, मैं तो इनफैक्ट लोग जो मोबाइल से इतना प्यार करते हैं तो पता चलता है कि आदमी के जाने के बाद सबसे पहले उसकी फैक्ट्री रीसेट होता है
1: yes.
2: तो वो जो इतनी मेमोरीज उसमें समाये है उसको अपने अंदर संभाले तो ज्यादा अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। बहुत सारी चीजें जो मजेदार लगी, बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखने लायक लगी कि मुझे भी सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगता है कि मेरे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जा पाए और आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, और इतनी अच्छी बातें जो मॉरल वैल्यूज को डिपेक्ट करती हैं। और इवन मैं कहूंगी कि आजकल ना इन चीजों पे लोग बात नहीं करना चाहते, हालांकि मुझे लगता है कि इन चीजों पे बात करनी चाहिए, अपने फैमिली के साथ बैठ करके खुले विचार अपने रखने चाहिए, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। हम क्या करते हैं कि हम घर पर जाते हैं, अपने सेलफोन्स में लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे घर में 5 नहीं 10 मेंबर हैं, क्योंकि पांचों के पास फोन भी है ना, तो वो भी हम फैमिली मेंबर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि बात तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आपसी तालमेल को ना खोएं और अपने परिवार को समय दें, और बिल्कुल जो आपने कहा कि एक लैंडिंग प्लेस होनी चाहिए फोन्स की, वो भी जरूर अपने घर में अपनी हम बना सकते हैं। जाते जाते मैं दोस्तों यही कहूंगी कि बाहर जा रहे हैं तो सेफली ड्राइव करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऋषि भुटानी एंड RJ वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नहीं।
1: लड़का आगे बढ़ता है,
0: हाँ।
1: लड़की पीछे हटती है,
0: फिर
1: लड़का लड़की को पकड़ लेता है,
0: फिर
1: लड़की शर्माकर मुस्कुरा दे तो पस।
0: नहीं समझा।
1: अबे लड्डू, लड़की हंसी तो फंसी। अब भी नहीं समझा?
0: नहीं।

0: देखो मोहब्बत के रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं। फूलों को पाने के लिए कभी कभी कांटों से उलझना पड़ता है। रोमियो जूलियट का किस्सा सुना?
1: नहीं।
0: लैला मजनू का?
1: नहीं।
0: अनारकली का?
1: नहीं।
0: ओ, तुम तो 100% देसी घी का लड्डू निकला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फॉर्मूला नंबर 440 ही ठीक रहेगा।
1: वो क्या?

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: जुकाम खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के।

एक हाथ में बंसी उसके, एक हाथ में चक्र संघार है। मेरा कान्हा बंसी वाला सबका पालनहार है। सुनिए श्रीमद् भागवत गीता वास्तु कृष्णा के साथ सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। और जीवन के कठिन से कठिन दौर को भी आसानी से पार कर जाइए।

0: कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक, गीता है जीवन की असली गाइड।
1: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् स्वजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।
0: सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर। हरे कृष्णा। जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, वास्तु कृष्णा के साथ।

0: तू अकेला भी है तो गम न कर, तेरे साथ वो है।
1: रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्णा के साथ सुबह सिर्फ शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: पर
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्ण के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज है कारगिल विजय दिवस। हमारे भारत में हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत और उन वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए समर्पित होता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। बात आगे और भी करेंगे, फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। 26 जुलाई आज की तारीख है और कारगिल विजय दिवस हमारे पूरे भारत में आज मनाया गया। कारगिल दिवस पर अब आगे बात करें और जानें इसके युद्ध के कारण और शुरुआत के बारे में। तो कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक लड़ा गया था। सर्दियों के मौसम में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं कारगिल क्षेत्र में अपनी अग्रिम चौकियों को खाली कर देती थी। पाकिस्तान ने इस स्थिति का फायदा उठाकर मई 1999 में घुसपैठियों की तरह, जिनमें पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे, उन्हें कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। उनका मुख्य उद्देश्य श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटकर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की पकड़ को कमजोर करना था। भारतीय सेना को 3 मई 1999 को कुछ स्थानीय चरवाहों द्वारा इस घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसके बाद उन्होंने प्लान किया था ऑपरेशन विजय। उसके बारे में बात करेंगे। जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। 26 जुलाई आज की तारीख और हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस को लेकर, क्योंकि मेरी इस वक्त आपसे मुलाकात होती है तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने जाने वाला था ऑपरेशन विजय के बारे में। तो घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये युद्ध अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण ठंड में लड़ा गया। भारतीय सैनिकों को ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़कर दुश्मन का सामना करना पड़ा, जो बेहतर स्थिति में थे। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले किए, जिससे भारतीय सेना को महत्वपूर्ण सहायता मिली। लगभग 60 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए टाइगर हिल, तोलोलिंग, बटालिक, जुबार टोप जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर पुनः कब्जा किया। अब इस युद्ध की समाप्ति और इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बात चल रही है कारगिल विजय दिवस को लेकर, और अब हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस का। ये जो युद्ध हुआ कारगिल का, इस युद्ध की समाप्ति और इसका परिणाम क्या रहा। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में अपनी जीत की घोषणा की और ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मगर यहाँ पर एक दुख की बात ये भी थी इस विजय के साथ कि इस युद्ध में भारत को विजय तो मिली, लेकिन हमें अपने 527 वीर सैनिकों को खोना भी पड़ा था, जबकि लगभग 1400 सैनिक इस युद्ध के दौरान घायल भी हुए। पाकिस्तान को इस युद्ध में करारी हार मिली और उसे अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इस कारगिल युद्ध से जुड़े हुए कुछ वीर नायकों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जाइए कहीं मत, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज। बात चल रही है कारगिल विजय दिवस को लेकर। युद्ध तक हम बात कर चुके थे, अब बात करेंगे इस कारगिल युद्ध के वीर नायकों के बारे में। कारगिल युद्ध में कई बहादुर सैनिकों ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें से कुछ प्रमुख नायक थे। पहले कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला। ये दिल मांगे मोर के नारे के साथ टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इसके बाद बात करेंगे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। इन्हें भी परमवीर चक्र मिला। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मनों का ये सामना करते रहे। इनके बाद राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र। दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने में असाधारण साहस इन्होंने दिखाया। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी के बारे में। ये भी परमवीर चक्र रहे। जुबार टोप पर दुश्मन को खदेड़ने में इनका महत्वपूर्ण नेतृत्व रहा। इससे आगे बातें आपके साथ चलती रहेंगी कारगिल विजय दिवस को लेकर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: बेटी बोझ नहीं घर की शान है, उसे पंख दीजिए, वो आसमान छू लेगी। बेटी को पढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: तेरी याद आती है रात भर, तेरा असर इस कदर है कि फिरता हूँ दर बदर।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। कारगिल विजय दिवस को लेकर बात चल रही है। अब बात करते हैं कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है पूरे भारत में। थोड़ा डिटेल में इस पर बात करने का प्रयास करते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि इस दिन हम देते हैं। ये दिन उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर होता है जिन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके बाद देशभक्ति की भावना की हम बात करते हैं। ये दिवस देशवासियों में विशेषकर हमारे युवाओं में, क्योंकि हमारे युवा ही देश का भविष्य है, उनमें देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। भारतीय सेना का सम्मान करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। ये वो मौका होता है जिस तरह भारतीय सेना हमारे लिए खड़ी होती है। आज भारतीय सेना सरहद पर खड़ी है तभी आप और हम चैन सुकून से रह पा रहे हैं। भारतीय सेना दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, तो क्या उनके सम्मान के लिए एक दिन हम उनके शौर्य के लिए, उनके साहस के लिए क्या एक दिन उनके लिए नहीं रख सकते? ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, पेशेवर दक्षता और बलिदान की अमर कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। बस इसीलिए हम कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं और इसको नहीं भूलना ही एक सच्चे भारतीय की पहचान है। आप भी मत भूलिएगा और अपने घर के बच्चों को जरूर इसके बारे में बताइएगा। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: Are you looking for a place from where your voice gets a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं लौटूंगा थोड़ी ही देर में।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। कारगिल विजय दिवस को लेकर आज हमने बात की। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप आज शो से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं अपनी हमारे साथ साझा करना ना भूलें हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। आइए जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी बताइएगा शो आपको कैसा लगा। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। जय हिंद जय भारत।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
1: ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो, रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

उंगली पर लगने वाली स्याही सिर्फ निशानी नहीं, आपकी ताकत है। शिकायत करने से अच्छा है सही चुनाव करें। हर वोट कीमती है, इसीलिए अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं और वोट करने का मौका मिलने पर जरूर वोट करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं, हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ। 1, 2, 3, 4।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए, अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल

0: सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनती रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now, 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, ये सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है

0: उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं बारहवीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
0: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
1: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल 12th करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है, विजिट के लिए एक बार बता दीजिए।
0: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों को जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए, रिसेप्शन पे हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
1: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
0: जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं IITs, NITs और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनके हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए। अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU and also presented my biomedical based startup at AIU. Kiran Verma Subharti College of Science is a very good college. It provides hands-on lab training experiences and also the faculty here are well experienced. They also provide students to think out of the box and also increase the scientific temperament out there. The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
2: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नज़र भी नहीं आता वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है. एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है. यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है. करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है. यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है जिसमें से एक था मदर डेयरी विच इज माई ड्रीम कंपनी. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया. ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जय हिंद जय भारत.
4: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
5: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
4: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
5: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
4: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना. और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
1: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम.
0: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जन

0: सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Shernaxis.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी।
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ।
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913 और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।